0: फिर जब वो उनको नजात दे देता है तो मुल्क में नाहक शरारत करने लगते हैं। लोगों, तुम्हारी शरारत का वबाल तुम्हारी ही जानों पर होगा। तुम दुनिया की जिंदगी के फायदे उठा लो, फिर तुमको हमारे ही पास लौट कर आना है। उस वक्त हम तुमको बताएंगे जो कुछ तुम किया करते थे। दुनिया की जिंदगी की मिसाल में किसी है कि हमने उसको आसमान से बरसाया, फिर उसके साथ मिला जुला सब्जा जिसे आदमी और जानवर खाते हैं निकला, यहां तक कि जमीन सब्जे से खुशनुमा और आरास्ता हो गई। और जमीन वालों ने ख्याल किया कि वो उस पर पूरी दस्तरस रखते हैं, नागहां रात को या दिन को हमारा हुक्म अजाब आ पहुंचा, तो हमने उसको काट कर ऐसा कर डाला कि गोया कल वहां कुछ था ही नहीं। जो लोग गौर करने वाले हैं उनके लिए हम अपनी कुदरत की निशानियां इसी तरह खोल खोल कर बयान करते हैं। और अल्लाह सलामती के घर की तरफ बुलाता है और जिसको चाहता है सीधा रास्ता दिखाता है।
1: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم

0: जिन लोगों ने नेकुकारी की उनके लिए भलाई है और मजीद और भी, और उनके चेहरों पर न तो स्याही छाएगी और न रुसवाई, यही जन्नती हैं कि उसमें हमेशा रहेंगे। और जिन्होंने बुरे काम किए तो बुराई का बदला वैसा ही होगा, और उनके चेहरों पर जिल्लत छा जाएगी और कोई उनको अल्लाह से बचाने वाला ना होगा। उनके चेहरों की स्याही का ये आलम होगा कि उन पर गोया अंधेरी रात के टुकड़े उड़ा दिए गए हैं, यही दोजखी हैं कि हमेशा उसमें रहेंगे। और जिस दिन हम उन सबको जमा करेंगे, फिर मुशरिकों से कहेंगे कि तुम और तुम्हारे शरीक अपनी अपनी जगह ठहरे रहो, तो हम उनमें जुदाई डाल देंगे। और उनके शरीक उनसे कहेंगे कि तुम हमको तो नहीं पूजा करते थे, बस हमारे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह ही गवाह काफी है, हम तुम्हारी परस्तिश से बिल्कुल बेखबर थे।
1: هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله

यही अल्लाह तो तुम्हारा हकीकी परवरदिगार है और हक बात के जाहिर होने के बाद गुमराही के सिवा है ही क्या, तो तुम कहां फिरे जाते हो। इसी तरह अल्लाह का इरशाद उन नाफरमानों के हक में साबित होकर रहा कि ये ईमान नहीं लाएंगे। इनसे पूछो कि भला तुम्हारे शरीकों में कोई ऐसा है कि खलकत को पहली बार पैदा करे और फिर उसको दोबारा बनाए। कह दो कि अल्लाह ही पहली बार पैदा करता है फिर वही उसको दोबारा पैदा करेगा, तो तुम कहां उल्टे जा रहे हो। पूछो कि भला तुम्हारे शरीकों में कौन ऐसा है कि हक का रास्ता दिखाए। कह दो कि अल्लाह ही हक का रास्ता दिखाता है। भला जो हक का रास्ता दिखाए वो इस काबिल है कि उसकी पैरवी की जाए या वो कि जब तक कोई उसे रास्ता ना बताए वो रास्ता ना पाए। तो तुमको क्या हुआ है, कैसा इंसाफ करते हो।

0: और ऐ नबी तुमसे दरियाफ्त करते हैं कि आया ये सच है, कह दो हाँ मेरे रब की कसम ये सच है, और तुम भाग कर अल्लाह को आजिज नहीं कर सकोगे। और अगर हर एक नाफरमान शख्स के पास रूए जमीन की तमाम चीजें हों तो वो अजाब से बचने के बदले में सब दे डाले, और जब वो अजाब को देखेंगे तो पछताएंगे और नदामत को छुपाएंगे, और उनमें इंसाफ के साथ फैसला कर दिया जाएगा और उन पर जुल्म नहीं होगा। सुन रखो कि जो कुछ आसमानों और जमीन में है सब अल्लाह ही का है। सुन रखो कि अल्लाह का वादा सच्चा है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। वही जान बख्शता और वही मौत देता है, और तुम लोग उसी की तरफ लौट कर जाओगे।
1: या अय्युहन नास कद जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफाउन लिमा फिस सुदूर व हुदा व रहमतुन लिल मुमिनीन قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو

और ऐ पैगंबर, इन लोगों की बातों से आजुर्दा ना होना, क्योंकि इज्जत सब अल्लाह ही की है, वो सब कुछ सुनता है जानता है। सुन रखो कि जो मखलूक आसमानों में है और जो जमीन में है सब अल्लाह ही के बंदे हैं, और ये जो अल्लाह के सिवा अपने बनाए हुए शरीकों को पुकारते हैं वो किसी और चीज के पीछे नहीं चलते, सिर्फ गुमान के पीछे चलते हैं और महज अटकलें दौड़ा रहे हैं। वही तो है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई ताकि उसमें आराम करो, और रोजे रोशन बनाया ताकि उसमें काम करो। जो लोग कुव्वत समात रखते हैं उनके लिए इसमें निशानियां हैं।

0: फिर नूह के बाद हमने और पैगंबर अपनी अपनी कौम की तरफ भेजे तो वो उनके पास खुली निशानियां लेकर आए, मगर वो लोग ऐसे न थे कि जिस चीज को पहले झुठला चुके थे उस पर ईमान ले आते। इसी तरह हम ज्यादती करने वालों के दिलों पर मोहर लगा देते हैं। फिर उनके बाद हमने मूसा और हारून को अपनी निशानियां देकर फिरौन और उसके सरदारों के पास भेजा, तो उन्होंने तकब्बुर किया और वो गुनहगार लोग थे। तो जब उनके पास हमारे यहां से हक आया तो कहने लगे कि यह तो खुला जादू है। मूसा ने कहा, क्या तुम हक के बारे में जब वो तुम्हारे पास आया ये कहते हो कि यह जादू है, हालांकि जादूगर फला नहीं पाने के। वो बोले, क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि जिस राह पर हम अपने बाप दादा को पाते रहे हैं उससे हमको फेर दो और इस मुल्क में तुम दोनों ही की सरदारी हो जाए और हम तुम पर ईमान लाने वाले नहीं हैं।
1: وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: GA FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता देव से नूर मुझो तो
0: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।

0: सही।
1: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
2: GFM 91.6।
3: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
4: brought to you by
5: Super Vibes Rice Collagen Beauty Cream, a product by Aksa Cosmetics Park।

0: पार्लियामेंट जो गजल इजलास अॼु थींदो। तारिक फज़ल चयो त पार्लियामेंट जो गजल इजलास अॼु सुबुह जो 11 वॻे थींदो।
1: ख़ैबर पख़्तूनख़्वा की हुकूमत पे, पीटीआई की हुकूमत पे, पीटीआई ने खुद एक सियासी खुदकुश हमला किया है। आप बप्पा की हुकूमत पे इल्जाम लगाए, आप सदर पाकिस्तान पे इल्जाम लगाए, इस बात से इंकार नहीं कर सकते कि जो हालात बने हैं सियासी, कानूनी और आईनी, वो पीटीआई की खास तौर पे उनकी सिबाई की आदत, उसमें उनका अहम किरदार है। एक बार फिर अपना हाथ वजीर आजम साहब को, हम सब अपना हाथ ऑपोजिशन को, ऑपोजिशन की क्यादत को, ऑपोजिशन की सियासी जमातों से आगे बढ़ाते हैं कि आए हम बातचीत करें।
0: बिलावल भुट्टो जरदारी केपी में गवर्नर राज जो जिम्मेवार पीटीआई के करार दई छो, हुकूमत या अपोजिशन के गालियों करण की तजवीज भी दई छी। कौमी असेंबली में खिताब कंदे बिलावल भुट्टो जरदारी हुकूमत इमरजेंसी वो एटमी बम इस्तेमाल करण का पैर अपोजिशन से गालू क्यों, अपोजिशन के मञणो पवंदो त पीटीआई हुकूमत पाण सियासी आपघाती हमलो कयो। सदर आयन मूजिब केपी में इमरजेंसी गवर्नर राज लगायो, फैसलो हमेशा लाए नाए, हुकूमत अपोजिशन मामले ते वेही बीहर गालू कन, हालतूं बेहतर थियूं त वज़ीर आज़म खे इमरजेंसी खत्म करण जी दरख़्वास्त कंदुसि। सेउने अंसर पाकिस्तान जे सियासी सियासत में मुदाख़लत करे रहिया आहिनि। दहशतगर्दी जी सूरत में भारत जो ऑपरेशन सिंदूर अॼु बि जारी आहे। भारत खां पाक फ़ौज हथां तबाह थियल छह जहाज हज़म न थी रहिया आहिनि। सभिनी खे मुतहद थी दहशतगर्दी ख़िलाफ़ विहणो पवंदो। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई हुकूमत खां केपी में खयल कदम वापस वठण जो मुतालबो करे छॾियो। कौमी असेंबली खे ख़िताब कंदे महमूद खान अचकज़ई चयो त हुकूमत जा कदम गैर आइनी आहिनि, वापस वरिता वञनि। बैरिस्टर गौर चयो त हुकूमत जमहूरियत ते राताओ हयो आहे, हुकूमत 58(2)(b) खे ॿीहर ज़िंदा कयो आहे, अवां चूंडियल हुकूमत खे घर भेड़ो कयो, समूरा नोटिफिकेशन रद्द कयूं था, समूरे पाकिस्तान के गैर फाल कयो वियो आहे।
1: ने बड़ी सोच विचार के बाद और मटेरियल एग्जामिन करने के बाद 2.5 घंटे की कैबिनेट डिस्कशन के बाद वजीर आजम साहब को ये मशवरा दिया गया कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा के हालात ऐसे हैं, इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से जिसे आम लफ्जों में अंदरूनी खलफशार कहते हैं, और सरहद पार से भी जो दरअंदाजियां हैं उनको सामने रखते हुए, और जो खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत का रवैया रहा है वॉर अगेंस्ट टेरर में, और बिलखसूस जो पिछले 1 साल से जब से मौजूदा काबीना ने वहां पे इख्तियारात संभाले 15 अक्टूबर 2025 से ऑनवर्ड, वो अलार्मिंग हद तक मुल्क की सलामती के लिए खतरा बनता जा रहा था।
0: केपी में इमरजेंसी है गवर्नर राज जो फैसलो सोची समझी कयो वियो। सोहेल आफरी जे वॾे वज़ीर थियण बाद सूरत हाल मुल्क की सलामती के खतरे ताईं पहुची वई हुई। कौमी असेंबली में ॻाल्हाईंदे कानून वारे वज़ीर सेनेटर आज़म नज़ीर ताड चयो आहे त बार बार निशानदेही बावजूद केपी हुकूमत ॻाल्हि न मञी। दिफ़ा वारे वज़ीर ख़्वाजा आसिफ चयो त पीटीआई हुकूमती दौर में जेको कुझु कयो सभु यादि आहे, केपी में गवर्नर राज खां सवाइ ॿियो को बि ऑप्शन न हो। ख़ुदा जे वास्ते केपी सां गॾु सिंध ते बि नज़र रखो, पीटीआई वटि फ़ैसिले खे ग़लति साबित करण लाइ को दलील न आहे। क़ौमी असेंबली में ॻाल्हाईंदे MQM अॻवान फारूक सत्तार चयो त हुकूमत केपी में गवर्नर राज जो फ़ैसिलो दिलि सां न आहे कयो, जेका नज़र केपी ते आहे साॻी सिंध ते बि रखी वञे।

पीटीआई केपी में इमरजेंसी है। गवर्नर राज के पिशावर हाई कोर्ट में चैलेंज करे छो। चेयरमैन बैरस गौर के तरफा वकील अली जमान दरख्वास्त दाखिल कराई। बैरस गौर है तो गवर्नर राज इमरजेंसी के पिशावर हाई कोर्ट में चैलेंज करे छो है। उम्मीद है अदालत सूबे में जमहूरियत बहाल कंदी। रूसी घरो वजीर पारा जीएचक्यू जो दौरो। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। बतरफ लागापन समेत खिते की सूरत हाल से गाल। आईएसपीआर मौजूद फील्ड मार्शल रूस से मुख्तलिफ शोबन के सहकार के हथी दियण वाले अजम जो वर्जाव। रूसी घरो वजीर पारा दहशतगर्दी खिलाफ वेड़ में पाकिस्तान के किरदार की सराह कई। पाकिस्तान के दौरे ते मौजूद उमानी परदेही वजीर सैयद बदर बिन हमाद की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात। बतरफ लागापन समेत खिते की सूरताल से गाल। बिन्हीं अगवाण जो व्यापारी सहकार के हथी दियण इतफाक। खिते की सूरताल से भी सहकार जारी रखने वाले अजम जो वर्जाव। रूसी मुलाकात कई। बतरफ लागापन व्यापारी सहकार के वधाण से गाल क्यू। खिते में जारी तकरार जो सिफारती हल कढ़ण से जोर भर वो। वफाकी हुकूमत पेट्रोल की कीमत में एक भेरों बीहर इजाफो कर छो। डीजल की कीमत मामूली लात। पेट्रोल की कीमत में वधीक एक रुपयो वी पैसा इजाफो। डीजल के मुल में मामूली उणी पैसा फी लीटर तेल लात कई वही। पेट्रोलियम शयों की कीमत में फेरफार बद पेट्रोल जो फी लीटर 393 रुपया 86 पैसा और डीजल जो फी लीटर 396 रुपया 65 पैसा फी लीटर मुकरर। पेट्रोलियम डिवीजन पारा जारी किया नोटिफिकेशन मौजूद पेट्रोल और डीजल जो नई कीमत 15 अक्टूबर लाए होंगी।

0: वरे वजीर सैयद मुराद अली शाह की क्यादत में सिंध के आला सतह वफद की चीन में ओबी सूबे के आला क्यादत से मुलाकात। कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी ओबी के गवर्नर सा मुलाकात में शर्जिल इनाम महमूद जाम खान छोरो मोहम्मद बख्श मर बया शरीक थे। सिंध ओबी विच में ज़राइत आईटी तालीम फनी तरबियत व्यापार सड़पकारी अड़ते गाल मुराद अली शाह ओबी जो यूनिवर्सिटी तहकीकी इदारा जदीद सनअतू सिंध लाइ अहम मौका फराहम करे सघन थियो। गवर्नर चयो त ओबी वट जदीद पैदावार निज़ाम मौजूद आहे जेको सिंध सां गजल मनसूबनि लाइ अहम मौका फराहम करे सघे थो। वफाकी आईनी अदालत 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में बुशरा बीबी की सजा मोतली वारी दरख्वास्त रद्द करे छी। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में ब रुकनी बेंच दरख्वास्त से बुधनी कई। वकील सलमान सफदर दलील ईंदे औरत लाए अदालत सदा नरम रवयो रखो है। बुशरा बीबी की सजा मोतल कई वे अदालत वकील जहा दलील बुधण बाद बुशरा बीबी की सजा मोतली वारी दरख्वास्त रद्द कर छी।
1: अदी आ छो तो सऊदी अरब आ एजाज वठाई बधाने की पैरों कोशिश कई जो जवाब दिनम कि बगैर कें ओह गिरफ्तार न थीम सिर्फ एजाज वठाई जो अना के तस्किल दियण लाए हो कि बधन की कोशिश कई हुई जैको इंकारी थियम। मुझी गैर मौजूदगी में मुझी भेण के पावर ऑफ ब्लड रिलेटिव हुई उन्हीं वो साइन कियो जैमें उ वजाओं सब लिखल हुई कि एजाज खतो असा तंग करे बाबा चौदह पलान है उधर पुराना कौन थी मुंह दींदा से
2: पुलिस रेड कई पर इो हक न कि मुझे फैमिली या सोएरा के अंधेरे में घिरन जाते मुझी फैमिली रही मुझी मेरू रही एक एक कर सभी से गालबोल थी मैं उनके
0: एमएनए एजाज जखराणी जो भाव खालिद जखराणी भेण कराची में गिरफ्तार। कराची पुलिस खालिद जखराणी संदस भेण गनमैन के डिफेंस वाले घर में गिरफ्तार कयो। दखण पुलिस मौजूद गिरफ्तार मंशात फिरोज निशानदेही ते कार्रवाई कई मजामत चार जणन के गिरफ्तार कयो आहे। आजाद जखराणी चयो आहे त एजाज जखराणी दुश्मनी ते लही आयो आहे। खालिद ऐं भेण के गिरफ्तार कयो वियो आहे। एजाज के बुधाइण चाहियां थो त पलांद पुराणा नाइन थींदा।

0: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 10 AM. This time check is brought to you by
3: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
4: अब आप सुनेंगे GFM Network पर KTN News.
5: Brought to you by Super White Rice Collagen Beauty Cream. A product by Aksa Cosmetics Pakistan.
6: के खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पे, पीटीआई की हुकूमत पे, पीटीआई ने खुद एक सियासी खुदकुश हमला किया है। आप वफा की हुकूमत पे इल्जाम लगाए, आप सदर पाकिस्तान पे इल्जाम लगाए, बट इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि जो हालात बने हैं सियासी कानूनी और आईनी, वो पीटीआई की खास तौर पे उनकी सिबाई की आदत उसमें उनका अहम किरदार है। एक बार फिर अपना हाथ वजीर आजम साहब को, हम सब अपना हाथ ऑपोजिशन को, ऑपोजिशन की क्यादत को, ऑपोजिशन जमातों से हम बातचीत करें।
7: बिलावल भुट्टो जरदारी केपीए में गवर्नर राज जो जिम्मेवार पीटीआई के करार दई छो, हुकूमत ऑपोजिशन के गालिंग करण की तजवीज भी दई छी। कौमी असेंबली में खिताब कंदे बिलावल भुट्टो जरदारी तो हुकूमत एमरजेंसी वो एटमी बम इस्तेमाल करण का पैं पोजिशन से गाल अपोजिशन के मंझणो पवंद तो पीटीआई हुकूमत पा सियासी आपघाती हमलो कयो, सदर आईन मूजिब केपीए में एमरजेंसी ए गवर्नर राज लगायो, फैसलो हमेशा लाए ना है, हुकूमत अपोजिशन मामले ते वेही बीहर गाल हालतू बेहतर थियं तो वजीर आजम के एमरजेंसी खत्म करने की दरख्वास्त कंदुस। पाकिस्तान सियासत में मुदाखलत कर रहा है, दहशतगर्दी की सूरत में भारत जो ऑपरेशन सिंदूर अज भी जारी है। भारत का पाक फौज हथा तबाह थियल छह जहाज हजम नथी रहा, सभी के मुतहद थी दहशतगर्दी के खिलाफ वेहणो पवंदो।

गुलशन हदीस जे फलकनास सोसाइटी में घर मां पंज भातियुनि जा लाश हथ अचण वारे वाके जी जांच कमेटी कायम। डीएसपी बिन कासिम, डीएसपी मलीर सिटी इंचार्ज आईटी ऐं ॿ एसएचओ टीम जो हिसो हूंदा। पुलिस ज़रियनि मुझ मोबाइल फोन ऐं पिस्तौल फॉरेंसिक जांच लाइ मोकिलिया वेंदा। शाज़ेब जे वेझनि दोस्तनि जा बि बयान रिकॉर्ड कया वेंदा। ताज़ो कुझु दोस्तनि शाज़ेब सां दोस्ती छो ख़तम कई हुई, शाज़ेब घर कॾहिं ऐं कंहिंखां ख़रीद कयो, हुन बाबति बि जांच कई वेंदी।

नवाब वली मोहम्मद के कच्चे वारे इलाके में हथियारबंद की फायरिंग बजना कत्ल अलीबाद थाने के हद में हथियारबंद फायरिंग कर बिन जन के कत्ल कयो। पुलिस है मकतूलन की सुणप निसार पली ए गुलजार माशी के नाल से थी है। जांच जारी है।

ऐं फेसगंज वेझो पका चांग में जवाबदारनि संगावती तकरार तां कुहाड़नि जा वार करे टिन ॼणनि खे मरणिंग करे छॾियो। हैदरी पाड़े में जवाबदारनि लोडर रक्षा ते वेठल टिन पोरियतन अमीर हुसैन मुबीन ऐं यामीन चांग खे ज़ख़्मी कयो। ज़ख़्मीनि खे ॻणितीअ जोॻी हालत में नवाब शाह जी सिविल अस्पताल मुंतकिल कयो वियो।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: Brought to you by व्हाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए सुपर व्हाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के

0: नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अ प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
2: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है। तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की? ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
3: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
2: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
3: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
2: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है
4: सुपर वाइट।
5: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उदंदा रहो, उदंदा।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुंगर खा भी दाधा नियर नहीं का चीज में आहे सकी कड़ो नहीं।
2: मोहब्बत तो एक समंदर होती।
3: ओए हेलो

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: It's 11 AM. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by
4: Super White Rice Collagen Beauty Cream. A product by Aksa Cosmetics Pakistan.
5: सिंध हुकूमत कणक रिलीज पॉलिसी जी अॼु खां फेर टे चकिन पहिरें मरहले में पुराणी कणक जारी करण जो सेप्टेम्बर खां घटि में घटि छहनि महीननि

0: आप आल हम्ज जे इस्तेमाल ते भी गौर कयो वेंदो। जे ॻोठ अला वधायो चन्नो जे प्राइमरी स्कूल में ॿिन महीननि खां उस्ताद मुक़ररु न थियण ख़िलाफ़ एहतजाज ॻोठाणनि चयो आहे त उस्ताद जे रिटायर स्कूल ॿिन महीननि खां बंदि पयल आहे। ॿारनि जी तालीम तबाह पई थिए, स्कूल में सहूलियतुनि जी बि खोट आहे। जल्द उस्ताद मुक़ररु करे ॿारनि जी तालीम तबाह थियण खां बचाई वञे। ऐं बख्शापुर भरिसां घर में चोरीअ जी कोशिश दौरान मज़ामत ते घर धणी ज़ख़्मी, टे चोर बि सोगा। ॻोठ भुटो में चोरीअ दौरान मज़ामत ते गोलियूं लॻण सबबि घर धणी बदल भुटो ज़ख़्मी थी पियो। खेसि ॻणती जोॻी हालति में रहीम यार खान इस्पताल मुंतक़िल कयो वियो। चोरी वारदात दौरान भाॻियनि टिनि चोरनि खे सोगो करे पुलिस हवाले करे छॾियो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम, मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। आप प्रोजेक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
3: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
4: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है।
5: तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की?
4: ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
5: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
4: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
5: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
4: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है।
6: सुपर वाइट, सुपर वाइट।
7: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ आवाज की डोर से बंधा हुआ
8: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत व यकजहती का पैगाम यहां वहां। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अंदाज जाहिर करियो आर्ट्स सा, पंहिंजी शख्सियत में आणियो नओ रंग, नओ अंदाज ऐं नई ताज़गी। अॼु ई पंहिंजे वेझे स्टोर तां आर्ट्स क्रीम हेयर कलर हासिल करियो ऐं पंहिंजी खूबसूरती खे ॾियो नओ रंग। आर्ट्स क्रीम हेयर कलर, हर रंग में खूबसूरती, हर अंदाज में एतमाद।
2: मोरो नौशहरो मीरपुर खास लाड़काना सखर गूंज रही है हर जगह पर सिंध की आवाज। GFM 88 नेटवर्क।

लोगों की सालगिरह है उनको कहेंगे मैंने मनी हैबिट रन ऑफ द डे हैव अ बिजी न्यूज़ के अलावा वो लोग जो कि बीमार हैं उनको कहेंगे गेट वेल सून. वो लोग जो कि लाइफ में कुछ अच्छा कुछ बेटर कुछ बड़ा कुछ नहीं कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं तो विश यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक. बहुत सारी बेस्ट विशेस आप लोगों के लिए कि आप अपने हर काम में कामयाब होते रहे. आमीन. इसके अलावा मेरी आवाज जिन जिन गलियों और शबारों शहरों शराहों वादियों और पहाड़ों दरियाओं गुजारों घरों और बाजारों छोटी बड़ी कारों मेरी परस्तारों या करोड़ों हजारों में सुनी जा रही है. तमाम सुनने वालों को चाहने वालों को मोहब्बत करने वालों और नफरत करने वालों को भी दिल से कहेंगे मरहबन बेगम अहलन व सहलन मरहबा बखैर आगे लेसी आया नुसरत बिस्मिल्लाह बाजार शाम नी हाउ एंड वेलकम इनटू जिंदगी गुलजार है.

तो प्रोग्राम में हमेशा की तरह बहुत कुछ है सुनने को, सुनाने को, समझने को, समझाने को, सीखने को, सिखाने को, बोलने को, बुलवाने को, और वो सारी बातें जो कि आप मुझसे करना चाहते हैं वो सारी बातें मैं आपसे करूंगी. लेकिन उससे पहले प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे प्रोग्राम में प्रोग्राम का पहला गाना.

प्लेजर प्रोग्राम में आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं तीन तरह के कार से. आप लोग मुझे सिंपली मैसेज कर सकते हैं. सिंपली मैसेज करने के लिए अपना मोबाइल उठाइए, राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, SKR टाइप कीजिए, स्पेस दीजिए, मैसेज टाइप कीजिए, उसको सेंड कीजिए 8881 पे. कमेंट करने के लिए हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/GFM Larkana FM 88.8 एंड GFM 88. ठीक है, तो ये दोनों आपको लाइव ऑडियो स्ट्रीमिंग आएगी, तो यहाँ पे आके आप ऑडियो स्ट्रीमिंग को देख सकते हैं और वहां पे कॉमेंट्स कर सकते हैं और सुपरवाइज प्रोडक्ट्स को जो है इस्तेमाल कर सकते हैं. और जब आप लाइव ऑडियो स्ट्रीमिंग पे आएंगे तो आपको सुपरवाइज के सारे प्रोडक्ट्स जो हैं देखने को मिलेंगे. ठीक है, इसके अलावा जी आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं. कॉल करने के लिए हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है 03000118. और इसके अलावा सखर और लाड़काना वालों के लिए सुपरवाइज का हेल्पलाइन नंबर है 03147745562. लाड़काना नहीं सॉरी हैदराबाद वाले डायल करेंगे 03702568321.

0: It's 11:30 a.m. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए. आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्च ब्यूटी क्रीम.
2: अरे न खुश और बीरोनो की स्किन हर इन्हीं जलाए छा डैमेज एंड डल स्किन के कयो आउट पर यू किए तो के खबर ड्राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जहे में आहिन चार रंग जी खूबियों ऐ कोचे कैसे फॉर्मुलेशन जो जल्द के रिस्टोर करे उन जी नमी के लॉक करे ऐ चावर जी खूबियों जल्द मा फाइन लाइंस ए झुरन के घट कर ऐ रिंकल्स के घट करे सिर्फ 3 दिन में जल्द के बढ़ाए नरम मुलायम ऐ ब्राइट उन सा गरुगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जैन जी हर कतरे सा चेहरे के मिले अधिक खूबसूरती हर ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स.
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट पिंक

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज। अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
3: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
2: सिंध जो आवाज बुधंदा।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: नंबर है सुपर वाइट वालों का सखर और लाड़काना रीजन के लिए, व्हाइट वालों का सखर और लाड़काना रीजन के लिए, दैट इज 03-14-77-544-62। ठीक है, एटलीस्ट आप लोगों ने इस पर कॉल जरूर करनी है अगर आपको किसी भी कोई भी प्रोडक्ट की मालूमात लेनी है, अगर आपको ये जानना है कि सखर और लाड़काना में कौन सी शॉप पे अवेलेबल है तो एग्जैक्ट हम उसी शॉप पे जाएं। ठीक है, ये भी आप पता कर सकते हैं। इसके अलावा जो डिजायर्ड प्रोडक्ट सकते हैं।

यहाँ पर ऐड कर सकते हैं सुपर वाई का ब्यूटी सीरम बूस्टर. सुपर वाई का ब्यूटी सीरम बूस्टर ऐड करते हैं, इसका मतलब यह है कि आपके जो क्रीम के रिजल्ट है ना, वो डबल से ट्रिपल हो जाएंगे और बहुत ज्यादा इनहेंस हो जाएंगे और बहुत ज्यादा आप खूबसूरत नजर आएंगे. ठीक है, तो सुपर वाइट का ये ब्यूटी सीरम बूस्टर जो कि आप लोग ऐड कर सकते हैं इसमें, और ऐड करने के बाद अपने क्रीम के रिजल्ट को डबल से ट्रिपल कर सकते हैं. और मजीद इसके रिजल्ट अगर हासिल करना चाहते हैं तो आप लोग सुपर वाइट का फेस वॉश भी यूज करेंगे, ऑयल कंट्रोल फेस वॉश. ठीक है, सुपर वाइट का ऑयल कंट्रोल फेस वॉश यूज करेंगे, सो दैट आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे. तो आज की मार्केट जाएं और बाय करें. तो मार्केट जाके क्या बाय करना है, सुपर वाइट की ऑयल कंट्रोल ब्यूटी क्रीम, सुपर वाइट का ऑयल कंट्रोल फेस वॉश और साथ में सुपर वाइट का ब्यूटी सीरम बूस्टर. अच्छा, ब्यूटी सीरम बूस्टर की खासियत यह है कि ब्यूटी सीरम बूस्टर जो है ना, आप लोग क्रीम में भी ऐड कर सकते हैं, आप जो मॉइस्चराइजर लगाते हैं उसमें भी ऐड कर सकते हैं. ठीक है, और किसमें ऐड कर सकते हैं आप लोग इसको अपनी जो है वन बाय वन ऐड कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा एक एक पिंच. ठीक है, एक एक पिंच हर स्टेप में, सो दैट आपको इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे. आपके जो फेशियल के, ये जो आपके ब्लीच क्रीम के रिजल्ट हैं, वो डबल से ट्रिपल हो जाएंगे और आप दिखेंगे इंस्टेंटली बहुत ज्यादा खूबसूरत.

0: हैं।
1: अच्छा साथ साथ आप लोगों की कॉल्स भी एंटरटेन करते हैं 03000113488 के ऊपर सुर लगाओ गाने सुनाओ सेगमेंट। हेलो
2: हेलो अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से? मकार जतोई भाई कैसे हैं? ठीक ठाक मजे में ही। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे बताइएगा कि प्रोग्राम सुन रहे हैं?
2: जी जी प्रोग्राम आप गाज सुनाए कंटिन्यू आपका प्रोग्राम था मेरे ख्याल से।
1: जी
2: मैंने कहा आपका प्रोग्राम आज सुनाए और सुनते रहिए।
1: अच्छा वैसे नहीं सुनते?
2: जी जी
1: वैसे नहीं सुनते आप?
2: हेलो
1: जी जी वैसे प्रोग्राम नहीं सुनते? हेलो
2: आवाज नहीं आ रही।
1: अब आ रही है मेरी आवाज?
2: हेलो
1: ओके जी आवाज नहीं आ रही। वेरी बैड।

0: देता काम के क्या मिले ओ बेवफा सोचे कहा। ये मेरा गाना है लेकिन आप मेरा गाना प्ले नहीं करती हो, जो भी मैंने आपको गाने सुनाए आप मेरे गाने कोई भी प्ले नहीं करती हो।
1: कोई भी प्ले नहीं करती? नहीं ऐसा नहीं हुआ होगा। हाँ अगर आपने सैड सॉन्ग सुनाया होगा तो वो प्ले नहीं किया होगा।
0: पहले मैंने उस दिन आपको गाना सुनाया था एक सोनो मुझी नजर में आए,
1: ये वाला मैंने प्ले किया था। हो सकता है मैंने लेट प्ले किया हो लेकिन मैंने प्ले किया था इतना मुझे याद है। और ये वाला जो गाना है ये मैं प्ले कर चुकी हूँ, आप सुन सकते हैं इसको ऑन एयर। ठीक है
0: मेरे दोस्त है
1: जल्दी से।

सुपर वाइक के प्रकाश जिनके दामों से जिंदगी गुलजार है, जिंदगी गुलजार है भाई सुपर वाइक अच्छा कॉस्मेटिक्स और सुपर वाइट की वाइटामिन सी क्रीम। अच्छा जो लोग सोच रहे हैं ना, जैसे अभी भाई ने कॉल किया और वो सोच रहे हैं कि कौन सा प्रोडक्ट लें, तो वो जो सोच रहे हैं ना वो सबसे पहले एक दो चीजें लें, ठीक है। एक चीज आप क्या लेंगे, फेस वॉश लें। फेस वॉश का कोई भी वेरिएंट जो आपको अच्छा लगता है अपनी पसंद से, या फिर मैं तो सजेस्ट करूंगी आपको कि जितने भी मर्द हजरात हैं क्योंकि वो बाहर रहते हैं, सन टैनिंग और जो पिगमेंटेशन है वो हो जाती है, तो विटामिन सी फेस वॉश आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, ठीक है। तो ये वाला ले लें, वैसे आप कोई भी लेंगे आपको जो रिजल्ट है ना वो बहुत ज्यादा अच्छे मिलेंगे। और इसके अलावा आप लोग एक अदद पेट्रोलियम जेली लें सुपर वाइट वालों की, इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और हेल्पलाइन नंबर नोट डाउन करें, कर लें, हेल्पलाइन नंबर है सक्कर और लाड़काना वालों के लिए 03147754462। और जो हैदराबाद वाले हैं वो मुमताज हसन खान से राबता करेंगे, उनका नंबर है 03702568321। गाना गाने के साथ न्यूज ब्रेक फॉलो बैक कमर्शियल ब्रेक, दोनों के बाद वापस आएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, साथ देना है। आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 12 PM. This time check is brought to you by
3: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
4: अब आप सुनेंगे GAFM Network पर KTN News.
5: Brought to you by
6: Super White Rice Collagen Beauty Cream.
7: A product by Aksa Cosmetics Pakistan.
8: Tuning exercise की गई. हमारी तरफ से बारहा ये कहा गया कि ये ऑप्शन एक आखिरी ऑप्शन के तहत इख्तियार की गई है, उससे पहले टाइम टू टाइम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, सदरे मुमलिकत, वफाकी काबीना, सिक्योरिटी एजेंसीज के रेलेवेंट जो ऑफिशल्स हैं वो टाइम टू टाइम हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा को इस बारे में एंगेज करने की भी कोशिश करते रहे। उन्हें मुख्तलिफ चिट्ठियों के हवाले से भी आगाह किया गया कि सूबे के जो लॉ एंड ऑर्डर के इंटरनल सिक्योरिटी है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, बवजह जो ऑन स्लॉट है दहशतगर्दी की, और उसमें बहुत बड़ा हिस्सा सरहद पार जो दरअंदाजी है वो भी है। और ये बात ढकी छुपी नहीं, आप मीडिया रिपोर्ट्स निकाल लें। कल कहा गया कि जी एपिक्स कमेटी क्यों नहीं बुलाई गई, उसको भी आपके सामने पेश करते हैं कि एपिक्स कमेटी के पिशावर में भी इजलास हुए जी गुज़िश्ता 3 सालों में, एपिक्स कमेटी यहां पे भी बैठी, फिर जो आपकी सूबाई कमेटीज हैं नेशनल एक्शन प्लान के तहत वो भी बैठते रहे। वजारत दाखला ने बारहा इस बारे में कोशिश की, वजीर दाखला।
4: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज,
5: ब्रॉट टू यू बाय
6: सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम, मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अब प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
0: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
9: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है।
10: तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की? ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
9: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
10: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
9: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी, एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
10: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है
11: सुपर वाइट।
12: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

इसके साथ साथ आज का टंग ट्विस्टर क्या है वो आपको बताऊंगी. तो आज का टंग ट्विस्टर कुछ इस तरह होगा कि पहले हम गाना प्ले करते हैं क्योंकि हमारा गाना जो है ना ऑलमोस्ट पूरा खत्म हो रहा है. सो इसी के साथ हम आगे मूव करेंगे. इसके साथ नहीं, इसके साथ हम आगे मूव करेंगे. इसके साथ

0: बताओगे आज का टंग ट्विस्टर है चाचा चमचम चटपटी चटनी चटखारे लेकर चाटते हैं। ठीक है, ये कहना है चाचा चमचम चटपटी चटनी चटखारे लेकर चाटते हैं, ये कहना है। और देखते हैं कि ये ज्यादा ज्यादा कौन कह पाता है। 03000113488 के ऊपर आप लोग कॉल करेंगे। ठीक है, चाचा चमचम चटपटी चटनी चटखारे लेकर चाटते हैं। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करें और कॉल करें। तब तक मैं आपको एक फॉर्मूले के बारे में बताती हूँ जी। और फॉर्मूला जो है ना वो आप लोग बना सकते हैं सुपरवाई के प्रोडक्ट से ही। सुपरवाई के कौन से प्रोडक्ट हैं जिनसे आप एक बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक आपको एक अदद बेहतरीन फॉर्मूला बिल्कुल भी नहीं मिल सका है। अगर आपने बहुत सारे फॉर्मूला ट्राई किए हैं और उससे आपको साइड इफेक्ट होंगे, क्योंकि सुपर वाइट वाले कभी भी अपनी क्वालिटी और मयार पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, और इसी वजह से इनके प्रोडक्ट सुपर से भी ऊपर हैं। तभी इन्होंने नाम भी रखा है सुपर वाइट। ठीक है, सुपर वाइट के लिए, सुपर वाइट फॉर्मूले को बनाने के लिए आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने एक अदद सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम लेनी है, एक अदद सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम एंड एक अदद सुपर वाइट ऑयल फ्री एक्नी क्रीम। ठीक है, एक अदद सुपर वाइट ऑयल फ्री एक्नी क्रीम और सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम। ठीक है, एक्नी क्रीम और ब्यूटी क्रीम दोनों ही ऑयल फ्री में आती हैं, ये ले लें। तीसरी चीज आप लोगों ने लेनी है सुपर वाइट ब्यूटी सीरम बूस्टर, और इन तीनों चीजों को एक जार में अच्छे तरीके से निकाल लें, क्योंकि जो एक्नी की क्रीम है इनकी वो ट्यूब की वेरिएंट में आती है, उसको अच्छे तरीके से निकाल लें। इसके अलावा जो ब्यूटी सीरम बूस्टर है वो आप लोग लास्ट में इसमें ऐड कर दें, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें, इतना मिक्स करें कि तमाम चीजें आपस में यकजा हो जाएं, और जब ये यकजा हो जाएं तो इनको जो है आप लोग स्टोर कर लें। स्टोर करने से पहले अपने फेस को वॉश करें सुपर वाइट ऑयल कंट्रोल फेस वॉश से। सुपर वाइट ऑयल कंट्रोल फेस वॉश से फेस को वॉश करने के बाद ये फॉर्मूला रात को सोते पर अप्लाई करें डेली बेसिस पे। 3 दिन में रिजल्ट्स दिखेंगे और 3 दिन में आप सीन बना देने वाले रिजल्ट्स होंगे, और 1 हफ्ते में विजिबल वह भी नहीं बल्कि आपके आसपास के लोग भी आपसे पूछना शुरू कर देंगे कि आखिर ये कमाल हुआ कैसे है। हेल्पलाइन नंबर आ सखर और लाड़काना वाले 03702568321। अच्छा, टंग ट्विस्टर एक बार फिर से आप सुन लें। चाचा चमचम चटपटी चटनी चटखारे लेकर चाटते हैं। ठीक है, ये कहेंगे। नेक्स्ट कॉलर लेने जा रही हूँ। हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से?
1: आबादी इमाम दिन कमर वाले, क्या हाल है? पटेल,
0: कौन से प्रोग्राम सुन रहे हैं भाई मेरे? तो आपने इसको इतना मतलब के दुखी अंदाज में क्यों गाया है? चलो मेरी नाइस। और सुपर वाइट के प्रोडक्ट यूज करते हैं? सुपर वाइट जो प्रोडक्ट यूज करना आयो खरीदते हैं कडे गंदो खरीद
1: सूमर जड़ी
0: सूमर जड़ी। ओके, टंग ट्विस्टर बुधो है?
1: बिल्कुल बुधा भाई, ये टंग ट्विस्टर तंग नहीं दो, ये तंग काट नहीं बुधाई नहीं तंग नहीं दो
0: तंग के नहीं दो
1: वहाँ अन्ना भाई तो वो गाना घूमता है बिना बुधाई तंगे।
0: ओके, तव्हां खे गानो ॿुधरायूं था। ठीकु आहे, पंहिंजो खोर सारो ख़्यालु रखो। ओके ठीकु आहे, ओके अलाह हाफ़िज़ जी। और 03000113488। चाचा चमचम चटपटी चटनी चटखारे लेकर चाटते हैं, ये कहेंगे। एक और कॉलर। हेलो, कौन बात कर रही है, कहाँ से? हेलो, अल्लाह हाफिज। 03000113488। एक और कॉलर लेंगे जी। हेलो,
1: चाचा चटपटी असां खाईंदासीं, चाचा चटपटी असां खाईंदासीं, चाचा चटपटी असां खाईंदासीं, चाचा चटपटी असां खाईंदासीं।
0: रुक तो जाए, चाचा चमचम चटपटी चटनी चटखारे ले लेकर चाटते हैं।
1: बस भाजी जलाल असांखे ॿुधा भाजी।
0: ओके, अल्लाह हाफिज़। 03000 111348

0: ओके जी, एक और कॉलर. हेलो हेलो
1: हेलो, अस्सलाम
0: वालेकुम. अस्सलाम, कौन कहाँ से?
1: कौन क्या जो
0: ओके प्रोग्राम सुन रहे हैं भाई?
1: जी हाँ.
0: ओके, कौन सा सुन रहे हैं?
1: सुपर वाइट.
0: सुपर वाइट का प्रोग्राम सुन. कौन से प्रोडक्ट यूज किए हैं? कौन सी क्रीम?
1: नाम समझ लो.
0: सुपर वाइट ही था.
1: हाँ, सुपर वाइट.
0: ओके जी, ये सुपर वाइट ही नाम है. सुपर वाइट का शो है तो सुपर वाइट ही नाम हुआ ना क्रीम का.
1: जी हाँ,
0: है ना. अच्छा, टंग ट्विस्टर सुनाए, बोलेंगे?

0: जी अच्छा, टंग ट्विस्टर है, अगर मैं बताऊं तो आप बोलेंगे।
1: अच्छा, टंग ट्विस्टर कौन सा है? कोशिश होगी इंशाल्लाह।
0: आपने कहना है कि चाचा चमचम चटपटी चटनी चटखारे ले लेकर जाते हैं।
1: ये मुश्किल है।
0: चलो ये मुश्किल है, चले जो आसान है वो बता दें। जो आसान है वो बता दें जल्दी से।
1: आसान बस आपका शो है, जबरदस्त शो है, सुन रहा हूँ और अभी दोस्त हैं सुन रहे हैं मेरे साथ, रबन नोफिल पोड रहे, अली शेर चना है और भी दोस्त हैं, बस बहुत सारे दोस्त हैं और आपको सलाम, सबको सलाम।
0: ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। और इसी के साथ हम

ओके जी, इसी के साथ हम गाना प्ले कर रहे हैं. हम सुनते हैं जी कोक स्टूडियो का लेटेस्ट सॉन्ग दैट इज रंगीन. ठीक है, इसको सुनते हैं.

0: है, अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए। आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो। आर्च ब्यूटी क्रीम जीए सखत।
1: अरे न, खुश्क और बीरोनो की स्किन हर इमेज लाइट छा डैमेज एंड डल स्किन के कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जेह में आहिन चारन जो खूबियों एक कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द के रिस्टोर करे उन्हें जी नमी के लॉक करे एक चामरन जो खूबियों जिल्द में फाइन लाइंस एंड झुरन के घट कन एंड रिंकल्स के घट करे सिर्फ 3 दिन में जिल्द के बढ़ाए नरम मुलायम एंड ब्राइट उन्हें संगरोगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जैसी हर कतरे सा चेहरे के मिले अधिक खूबसूरती हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
3: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंधु जो।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

Okay, you welcome back once again. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है स्पॉन्सर्ड बाय सुपर वाइट प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स सुपर वाइट प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स और सुपर वाइट के बहुत सारे प्रोडक्ट जिनसे आप हैंड एंड फीट फार्मूला भी तैयार कर सकते हैं. लेकिन उससे पहले हेल्पलाइन नंबर नोट डाउन कर लें. हेल्पलाइन नंबर है सखर और ललकाना वालों के लिए 03-14-77-544-62. इसके अलावा जो हैदराबाद वाले हैं वो मुमताज हसन खान से राब्ता करेंगे. उनका नंबर है 03-70-25-68-321 03-70-25-68-321. सखर और लालखाना वाले डायल करेंगे 03-14-77-544-62.

इसके अलावा जी आप लोग मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, सेंड हमें मैसेज कर दिया है महबूब अली मोरो सिटी से, अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, आपका प्रोग्राम सुपरवाइज जिंदगी गुलजार है वेरी नाइस है, और आप जलाल को प्ले नहीं कर रही हैं। अच्छा जलाल सफदर बलोच ने बहुत सारे मैसेज किए, सफदर बलोच इसके अलावा सफदर बलोच ने बहुत सारे शेर लिख भेजे हैं हमें, थैंक यू सो मच सफदर बलोच। इसके अलावा गाने की तरफ भी हम चलेंगे, एक हम आपको बताएंगे।

0: ओके जी एक और कॉलर. हेलो. ओके हेलो हेलो. वालेकुम अस्सलाम सरदर्द, कैसी हो? मैं बहुत अच्छी हूँ सरदर्द. तुम्हारे लिए इतना अच्छा टंग ट्विस्टर लेकर आई हूँ, किधर गायब हो?
1: इतनी दिन से नहीं सुन पाई आपका शो, आज सुन रही
0: हूँ. अच्छा, तबीयत ठीक नहीं है, क्या हुआ है तबीयत को?
1: मलेरिया हुआ है.
0: थोड़ा सा जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही.
1: मलेरिया हुआ था मुझे.
0: मलेरिया हुआ था? अच्छा, अब कैसी हो? अब ठीक हो? चलो जबरदस्त, अल्लाह ताला तुम्हें जल्दी से सेहतियाब करे और तुम पहले से भी ज्यादा अच्छे अच्छे टंग ट्विस्टर बोलो. और आज का टंग ट्विस्टर सुना है? एक बार रिपीट करो. चाचा चमचम चटपटी चटनी चटखारे ले लेकर
1: चाचा चमचम चटपटी चटनी चटकारे ले लेकर चाहते हैं. चाचा चमचम चटपटी चटनी चटकारे ले लेकर चाहते हैं. चाचा चमचम चटपटी चटनी चटकारे ले लेकर चाहते हैं. चाचा चमचम चटपटी चटनी चटकारे ले लेकर चाहते हैं. चाचा

0: आगे जाओ। वाह, मलेरिया में भी इतना अच्छा कह लेती हो टंग ट्विस्टर।
1: मलेरिया में तो स्पीड ज्यादा हो गई है।
0: मलेरिया से स्पीड ज्यादा हो गई है?
1: हाँ, बस मेरी आवाज अपनी से आ रही है।
0: किसी स्पीड वाले मच्छर से मलेरिया हुआ होगा। है ना?
1: शायद मच्छर की भी स्पीड इतनी तेज होगी ना।
0: हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। चलो जल्दी से ठीक हो जाओ सरदर्द। कुछ और कहना है? थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। जीरो 3000113488। और जो लोग बार बार कॉल कर रहे हैं, एक बार कॉल करने के बाद अगर उनकी कॉल दोबारा आती है तो मैं ड्रॉप कर दूंगी, ठीक है? ड्रॉप सीन हो जाएगा। इससे पहले कि हो जाए, मैं आपको पहले से बता रही हूँ ताकि आप लोग को पता चल जाए, ठीक है? 3000113488 इसके ऊपर कॉल और टंग ट्विस्टर, और साथ साथ तो का हेल्पलाइन नंबर खाना वालों के लिए स्पेशली सखर और लाड़काना वाले डायल करेंगे 0375-4462, ठीक है? इसके अलावा जो हैदराबाद वाले हैं वो डायल करेंगे

ओके एक और कॉलर. हेलो हेलो वालेकुम अस्सलाम. कौन कहाँ से? ओके कहाँ से बात कर रहे हैं? ओ कॉल ड्रॉप हो गई. अच्छा साथ साथ सुपर वाइट की स्ट्रॉबेरी ब्यूटी क्रीम को भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग. ये वो वेरिएंट है जिसको आप अपनी कोरियन ग्लास स्किन बनाने के लिए यूज कर सकते हैं. तो अगर आप अपनी स्किन को कोरियन ग्लास स्किन बनाना चाहते हैं तो सुपर वाइट की स्ट्रॉबेरी ब्यूटी क्रीम प्लस सुपर वाइट का स्ट्रॉबेरी फेस वॉश यूज करें.

ओके तो स्ट्रॉबेरी ब्यूटी क्रीम के बारे में हम बात करो, यूज कर सकते हैं कोरियन ग्लास स्किन बनाने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये तैयार की गई है कोरियन फार्मूला के साथ और अक्सर कॉस्मेटिक्स वाले सुपर वाइट की कोरियन फार्मूले से तैयार की गई स्ट्रॉबेरी ब्यूटी क्रीम जिसमें स्ट्रॉबेरी एक्सट्रैक्ट मौजूद हैं ये बनाते हैं और इसके रिजल्ट्स आपको 3 दिन में विजिबल नजर आते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग यूज कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी कोरियन एंड ग्लास स्किन हो, सो इसको यूज किया जा सकता है। प्लस अगर इसके रिजल्ट को डबल से ट्रिपल बनाना चाहते हैं तो सुपर वाइट का ब्राइटनिंग फेस वॉश भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। और इसके अलावा जी आप इनके सोप्स को भी यूज कर सकते हैं, अपनी स्किन केयर रूटीन में ऐड कर सकते हैं। सुपर वाइट का ब्यूटी सोप, ऑयल फ्री ब्यूटी सोप, इसके अलावा सुपर वाइट का राइस कोलेजन सोप भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सुपर वाइट का राइस कोलेजन सोप जिसको इस्तेमाल करने के बाद आपकी सर से लेकर पांव तक कोरियन ग्लास स्किन होना पॉसिबल है, ठीक है, लेकिन आपने इसको कंटिन्यूसली यूज करना है। और अगर आप कोरियन ग्लास स्किन बनाने के लिए सुपर वाइट की स्ट्रॉबेरी ब्यूटी क्रीम यूज करते हैं उसमें भी आप सुपर वाइट का ब्यूटी सीरम बूस्टर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ब्यूटी सीरम बूस्टर ऐड करके आप उसके रिजल्ट्स को डबल से ट्रिपल बना सकते हैं और रिजल्ट्स को इनहेंस कर सकते हैं। सुपर वाइट का राइस सीरम भी ऐड किया जा सकता है सुपर वाइट की राइस ब्यूटी क्रीम में, ठीक है। तो ये रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे पहले 3 दिन के अंदर। और अगर कहीं पर प्रोडक्ट्स ना मिल रहे हो तो हेल्पलाइन नंबर पर रब्ता किया जा सकता है। हेल्पलाइन नंबर है 03147754462। इसके अलावा जो हैदराबाद

7025683210 पर आपका करेंगे 5681। इसके अलावा सखर और लड़काना वाली 03177544।

0: White Ish Beauty Cream Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
1: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
2: Brought to you by Super White Rice Collagen Beauty Cream. A product by Aksa Cosmetics Pakistan.
3: आपको पता है कितनी जंगें पूरी दुनिया में चल रही हैं? मार्क का हक में जो मुंह की खानी पड़ी है हिंदुस्तान भारत को मोदी सरकार को, उसके बाद आपका ख्याल है वो ऐसे ही बैठे रहेंगे? ऑपरेशन सिंदूर उनके जहन में अभी भी चल रहा है, क्योंकि उन्होंने बताना है कि वो क्या कर रहा है, पाकिस्तान से किस तरह हजीमत का शिकार हो गया है. और दूसरी तरफ आप अफगानिस्तान देख रहे हैं, हॉस्टाइल रेजिम्स ऑन बोथ साइड, और वो आप प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं, वो नहीं आपका सामना करना पड़ता. कुछ आमने सामने जो जंग हुई है उसमें उनको बुरी तरह ब्लडी नोज हुई है, तो वो अब प्रॉक्सी वॉर चला रहे हैं. आप होशमंद हो जाए कि हो क्या रहा है नाक के नीचे. और आपके सूबे जो आप कहते हैं ड्यूरेंट लाइन, देर इज नो सच थिंग एज ड्यूरेंट लाइन, या अंग्रेज ड्यूरेंट लिख के गया, दिस इज द इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान. देर इज अ बॉर्डर एंड देर मस्ट बी अ पासपोर्ट. मैं अपने मुल्क का तहफ क्यों नहीं करूं? करूं, लेकिन आप उसका खुला दरवाजा तो ना छोड़ें. आपके रिश्तेदार हैं तो पार्टीशन हुआ तो पंजाब और सिंध के रिश्तेदार नहीं थे सर. आगे मैं नहीं बात करना चाहती उन चीजों का, लेकिन यू हैव टू हैव वन पॉलिसी, वन स्टेट, एंड यू हैव टू फाइट.
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज.
2: Brought to you by Super White Oil Free Beauty Cream, मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए. Super White Oil Free Beauty Cream के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में. अब प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान.
4: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6.
5: Finally, अब थोड़ा मी टाइम बनता है. हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम. अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है.
6: तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की?
5: ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है, क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है. तुम कौन सी यूज करती हो?
6: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ, जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है.
5: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है, इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम.
6: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम, जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी. एंड आई एम यूजिंग विटामिन बेस्ट एंड ग्लोइंग.
5: अच्छा,
7: खुशखबरी. हाणे अवां के परेशान थियण जी का भी जरूरत न आहे. जेकॾहिं तव्हां कंहिं बि बीमारी में मुबतला आहियो या बीमारी पुराणी थी वई आहे, त उन बीमारीअ जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे. सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल नवाबशाह, मरीजन जो चेकअप एंड इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिन. अल्हम्दुलिल्लाह.

0: केतिरा ई मरीज सेहतयाब थी चुका आहिनि। अवां बि हिकु दफ़ो आज़माए ॾिसो। चेकअप फीस सिर्फ़ 300 रुपया। क्लिनिक में मेडिकल स्टोर जी सहूलियत पिणु मौजूद आहे। क्लिनिक जो टाइम ऐं ॾींहुं हर छंछर खां ख़मीस ताईं सुबुह जो 10 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं जुमो मोकल आहे। एड्रेस: सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक, बदीन स्टॉप रोड, पुराणी सब्जी मंडी, MCB बैंक जे साम्हूं, नया पुल, हैदराबाद। वधीक मालूमात जे लाइ राब्तो करियो 0306244770।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, ॿुधंदा रहो।

तुम्हारी उम्मीद माजिज़ों के बादशाह से है, तुम्हारी उम्मीद माजिज़ों के बादशाह से है, फिर क्यों परेशान हो, तुम्हारे पास तो अल्लाह है। तमाम खूब सतना सुनी सुने समाधान की मुझे तरफा अस्सलाम वालेकुम। और कुल दुआओं के संबंध है शहद की बारिश लासुल खजानों के साथ वाहे पैसे कल पचास से कल तक सुबह से शाम तक दिन से रात नीचे जाता जमीन से आसमान तक जिंदगी से मौत चांद से दर्द से खुशी तक जल्द से दिल तक जिंदगी के पहले दिन से जिंदगी के आखिरी दिन तक अल्लाह ताला आप सबको हम सबको हमेशा हमेशा हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों के साए में सलामत रखे सो आमीन या रब्बल आलमीन। बिल्कुल जी आप सुन रहे हैं जी एफ एम 88 नेटवर्क। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मांतली नूरियाबाद और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं वाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल जी वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो हर तरह से आपके खूबसूरती के लिए यहाँ पर आप लोगों को बता तरह से आगेंगे किस तरह से आपकी खूबसूरती में इजाफा लाने के साथ साथ आपको हसीन खूबसूरत और दिलकश बना देंगे। तो जनाब यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स और वाइट एज के प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में आप लोगों को इस पूरे प्रोग्राम में बताया जाएगा। ओके जी सुनने वाली तमाम समातों को वेलकम इन खुश आमद। साथ ही साथ यहाँ पर आप हमारे साथ मौजूद हैं जनाब, अपने हाल चाल बताते जाइए। सुनिए आपकी हालत मूड के साथ सब

आप लोगों का। जब खूबसूरती के मामले में थोड़ा सा ऐसा होता है ना कि भाई दिल खराब हो चुका है, कोई भी प्रोडक्ट लगाते हैं तो स्किन खराब हो जाती है, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो उसके लिए भी आप लोगों को बताया जाएगा कि क्या आप अपने चेहरे पर इस्तेमाल करके अपनी खूबसूरती में इजाफा करने के साथ साथ अपनी खूबसूरती की हिफाजत भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में ढेरों ढेर आप लोगों के साथ बातें करेंगे। इसी के साथ साथ बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं। बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए यानी कि फ्री होकर हमारे इंतजार कर रही थी। ऐसी बहुत सारी अंटियां, अम्मियां, खालाएं, बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी यानी कि लंच बनाने के दौरान, सभी अपने काम भी कीजिए, हमें भी सुनिए, आपको कहेंगे मेरी वाली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए तो जनाब आप जबरदस्ती गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए। तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 हल्की स्माइल लाएंगे और यहाँ पर आप लोगों को आगे से प्रोग्राम करवाएंगे। आगे से प्रोग्राम करते हैं जी आज एक बहुत प्यारे से कसीदे के साथ। बहुत प्यारा कसीदा हमारी लिस्ट में मौजूद है, कदम जैसे ही वापस दोबारा आप लोगों के पास मुखातिब है कि आज के प्रोग्राम में करनी है। तो आप सुन रहे हैं एंड इसकी ब्यूटियां हासिल करते रहिए।

क्रीम, इनमें मौजूद विटामिन ई बीट्स और जदीद माइक्रो बीट्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखी और चमकदार सिर्फ बिंदीहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ये कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर दिन जोशो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

जी आप सुन रहे हैं वाइट एश एंड डीस्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर किया जा रहा है डीस्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। आपके सिद्रा यहाँ पर आपके साथ मौजूद है, मेरे साथ कौन है मुझे बताते जाएंगे और अपने होने का एहसास दिलाने वाले हैं। किस तरह से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे वो आप लोगों को बताते हैं, ताकि अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरह से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल जी, बाकी तो सारी बातें हम करेंगे, लेकिन साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को आज के प्रोग्राम का टॉपिक भी बताते हैं, ताकि अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने तो आप टॉपिक के ऊपर भी बात करें। और साथ ही साथ अगर आप हमारे प्रोडक्ट्स का यूज कर रहे हैं, चाहे आप डीस्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं, चाहे आप वाइट एज का कोई भी प्रोडक्ट लगा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है ना कि वाइट एज में आप लोगों को बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। बाकी तो आप ये भी जानते हैं कि डीस्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए डीस्किन ब्यूटी क्रीम एंड डीस्किन का फेस वॉश अवेलेबल हो चुका है। ये दोनों प्रोडक्ट्स हैं डीस्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में। बाकी अगर हम यहाँ पर वाइट एज के प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो मैंने ये सोचा है कि भाई आप लोगों को जब इन दोनों प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे तो ऐसे करते हैं ना कि आप लोगों को पहला वाला जो घंटा होगा उसमें डीस्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताया जाएगा, और जो दूसरा घंटा होगा उसमें आप लोगों को वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताया जाएगा। तो इस तरीके कार से ये होगा कि आप लोगों को समझ भी आ जाएगा कि जो हम प्रोडक्ट्स आपको बता रहे हैं उनकी क्या क्वालिटीज हैं, वो आप किस तरह से इस्तेमाल करके अपनी खूबसूरती में इजाफा ला सकते हैं। तो चाहे हम यहाँ पर वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का जिक्र करें या फिर डीस्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का जिक्र करें, बात तो भाई एक ही हो जाती है कि दोनों प्रोडक्ट्स आप लोगों की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए तैयार हुए हैं, और दोनों ही प्रोडक्ट्स आप लोगों के चेहरे पर खूबसूरत सा निखार लाने के लिए, आपकी खूबसूरती को हिफाजत में रखने के लिए। इसी के साथ साथ यहाँ पर आज के सवाल की जानिब आते हैं। तो आज मैंने आप लोगों से सवाल पूछना है कि आप मुझे बताइए भाई, ऐसा होता है ना कि बचपन में बहुत सारी हमने शरारतें करी होती थी, बचपन में बहुत सारे लोग जो थे ना बहुत सारी शरारतें करते, बच्चों को देख लीजिए वो कितनी ज्यादा शरारतें करे होते थे। तो जब हमारे बचपन की बात आ जाती है, आप लोगों की बचपन की बात आ जाती है, तो आप आज मुझे ये बताइए कि आप जब बचपन में शरारत करते थे तो आपको जो आपके वालदेन या आपके घर वाले जो है वो कोई सजा देते थे, तो उस सजा में सबसे फनी वाली सजा कौन सी थी? आपको लगता है अभी आप जब याद करते हो उस सजा को तो आपको लगता है कि ये तो भाई बड़ी फनी सजा थी जो हमें बचपन में मिला करती थी। तो आज आप मुझे इस सवाल का जवाब बताएंगे। अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अपना सेलफोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस, दीजिए अपना नाम, लिखिए पूरा मैसेज लिखिए और उसे सेंड कीजिए 888 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनने वाले तो ये लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको आराम से हमारा पेज मिल जाएगा, और वहां पर आइए आपको हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट मिल जाती है जिसे आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। बिल्कुल जी, कंजूसियां कर देते हैं आप, पोस्ट को लाइक नहीं करते, शेयर भी नहीं करते, बस कमेंट कर देते हैं। अरे भाई, पोस्ट को लाइक और कमेंट और शेयर, ये तीनों काम करने होते हैं, तो जल्दी से हमारी पोस्ट को लाइक कीजिए और यहाँ पर आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप भी हमारे साथ मौजूद है, आप भी हमारे इस ब्यूटीफुल से प्रोग्राम का ब्यूटीफुल लिसनर जो है वो हिस्सा बनते जा रहे हैं। इसी के साथ साथ आप जो है ना अपने करीबी जनरल स्टोर्स के ऊपर, चाहे आप डीस्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स को अवेलेबल कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जो नंबर्स बताऊंगी ना, उन नंबर्स के ऊपर बस आपने रब्ता करना होगा। जैसे ही आप रब्ता करेंगे तो आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर ये तमाम प्रोडक्ट्स अवेलेबल करा दिए जाएंगे। तो जल्दी जल्दी से नंबर्स को नोट रखा करें, ताकि जब भी आप लोगों को जरूरत पड़े तो आप नंबर्स के ऊपर रब्ता करके इजीली उनसे मालूमात ले सके, उनसे पूछ सके कि कहाँ कहाँ से हमें मिल सकते हैं ये तमाम प्रोडक्ट जो कि हमें पाजी सदरा बताती है। अच्छा, सो नंबर है 03-12-50-25-907 बड़ी 312 पंजाह 75-970 एंड योर नंबर आहे 03-27-38-4309 बड़ी 332 73-84-309 ही बई नंबर्स हैं जेके तव्हां डायल करे सघो था पंहिंजे करीबी जनरल

तक लगायो पया या अन्य खाली तव्हां सिर्फ़ प्रोग्राम ॿुधो पिया बाबा ईअं न कयो वञो पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर सां वठी अचो परचेस कयो ऐं सोणा सोणा थी वञो अच्छा अॼु अव्हां खां सवाल पुछो आहे त तव्हांखे नंढपण में जॾहिं तव्हां शरारतूं कंदा हुया ऐं तव्हांखे कुटकी बि मिलंदी हुई ऐं तव्हांखे सज़ाऊं मिलंदियूं हुयूं वालदेन तव्हांखे घर वारा तव्हांखे सज़ा ॾींदा हुआ त उन्हनि मां कहिड़ी सज़ा अॼु तव्हां यादि करे तव्हांखे महसूसु कंदा त बाबा हीअ ॾाढी फनी सज़ा असांखे मिलंदी हुई ऐं हुन सज़ा खे तव्हां यादि करे चवंदा बाबा हीअ बि हाणे सज़ा हुई जेका असांखे नंढपण में मिली हुई सो तव्हां जल्दी असांजे प्रोग्राम जो हिसो थियो नज़ीर खोसो भाई में सुन रहे बलोचिस्तान से वेलकम कयो अथई लिखते हैं कि चाहे आप खुद को फूल बनाकर पेश करें या मोमबत्ती की तरह नरम पिघल जाएं लोग आपके साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे जैसी उनकी फितरत है बिल्कुल आपने सही लिखा है बहुत बढ़िया और अखलाक भाई हमारे प्रोग्राम में मौजूद है कश्मीर से आप हमारा शो सुन रहे हैं ओगी जी वेलकम कहते भाई को रशीद खोसो में सुन रहे हैं हैदराबाद से वालेकुम अस्सलाम प्यारे भाई हैदराबाद में भी आपके लिए अवेलेबल है जनाब देश की ब्यूटी प्रोडक्ट और तारिक भाई हमें सुन रहे हैं वालेकुम अस्सलाम तारिक भाई आपको भी वेलकम इन खुशामदीद हो गया ऐसे मेहरबानी आ चुके हैं वालेकुम अस्सलाम वाले सलाम अदर ओ माई फेवरेट आर सी मैडम मुस्कान जी कैसी हैं आप तबियत मूड वगैरह ठीक ठाक है ना मैं भी आ गया वेलकम कहते हैं दिल से आपको भी दिल से वेलकम कहते हैं और ये हमारे साथ हैं राजा जनरल स्टोर रेशम गली हाँ जी राजा जनरल स्टोर रेशम गली नौशेरो फिरोज से आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल है क्या बात है जितने भी नौशेरो फिरोज वाले लिसनर समय सुन रहे हैं वो राजा भाई से जाकर जो है ना आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हैं तो जाइएगा और परचेज कीजिएगा शेर जमान अहमदानी हमें सुन रहे हैं वालेकुम अस्सलाम ये मौजूद है गुड आफ्टरनून हेलो आरजे सदरा मुस्कान जी आप कैसी हैं ये शो इज नाइस वेरी नाइस दिस इज अल्ताफ अली गादी बलोच फ्रॉम कराची ओके जी आपको भी वेलकम हो गया अली रसल लगारिया में सुन रही है गोठ जाम खान लगारी से सिस्टर सिद्रा मुस्कान जी वालेकुम अस्सलाम ठीक हूँ आप बताएं तमा गानो लिखियो ओके हो गया जी और तमा डेडिकेशन सेंड कई है अजहर लगारी आकिब लगारी आज गुलाम मुस्तफा टालपुर इमाम बख्श खोखर सिद्रा सिस्टर सिद्रा जैसे सॉन्ग है ना वैसे ही डी स्किन ब्यूटी क्रीम का रिजल्ट है सिस्टर और सॉन्ग जरूर प्ले करना जी जी भाव मैं कोशिश क्या थी तुझे पसंद जो गानो हलाय वी तुम डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करो है तरी तव्हांखे ख़बर आहे त डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका आहे उहा केतिरा सुठा रिज़ल्ट तव्हांखे ॾे पई ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम सां गॾु तव्हांखे डी स्किन जो फेस वॉश बि ट्राए करे ॾिसणो आहे उन खां अलावा इहे हमारे साथ सिद्रा आपका शो शिकारपुर में नहीं चलता है क्यों मैं दो दिन वहां था आज लाड़काना में हूं फिदा हुसैन मक्सी और सलाम दो अद्दो खान मक्सी और उसरा बेबी को चलें जी सबको सलाम हो गया लेकिन शिकारपुर में क्यों नहीं चलता सखर वाला FM अगर आप ज्वाइन करते सखर ट्यून करते तो आपको सखर से हमारा प्रोग्राम जो ना शिकारपुर में आप इजीली सुन सकते थे नहीं तो ये फिर फेसबुक वाला ऑप्शन तो है ही है कि आप फेसबुक पर कहीं पर भी हमारा प्रोग्राम आराम से सुन सकते हैं और मुलाजिम भाइयों में सुन रहे हैं वेलकम कहते मुलाजिम भाई आपको और महर इरफान सियाल साहब हमें प्रोग्राम में शामिल कर चुके हैं ज्वाइन कर चुके हैं कहते हैं गुड आफ्टरनून मैम आरजे ग्रेट होस्टिंग थैंक यू वेरी मच सर आपकी ये मोहब्बत है और हमारे साथ ही प्रोग्राम आपको पसंद है बहुत शुक्रिया जी हिदायतुल्लाह आ चुके हैं वालेकुम अस्सलाम और कहते मुस्कान ये मंजिल सिखरानी का गाना है ओके जी लगाते हैं आपके गाने और मावन सफर तो न्यू हमारे साथ ही कहते हाय 2021 अच्छा 2021 से सुना उसके बाद जो है ना 2026 में आपने मुझे ज्वाइन किया कहते हैं आपका शो में आया हूँ वेलकम तो करो ना जी जी बिल्कुल आपको वेलकम कहते हैं मोहम्मद सफर तुन्यू और आपको वेलकम के साथ साथ ये भी बताते हैं कि अब आप जो है ना डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज करके अपनी खूबसूरती में इजाफा लाने वाले हैं चाहे डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताती हूँ ना तो चाहे आप मर्द हज़रात हैं चाहे आप ख्वातीन हैं आप सब लोग ट्राई कर सकते हैं और डी स्किन ब्यूटी क्रीम की ये खास क्वालिटीज हैं कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना हर स्किन के ऊपर सूट करती है क्योंकि ये मेडिकेटेड फार्मूला है बहुत सारी बातें हैं जो आप लोगों को बताएंगे जितने भी नए लोग हमें सुन रहे हैं उनका जाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है तो यहाँ पर आप हमारी पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए और गदा हुसैन भाई भी हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं तव्हां जी सिंधी शायरी बाबा सिंधी शायरी थोड़ो मां गलत रीड करे वेंदी आहे कहते हाय सिद्रा कैसी हो मैं भी आ गया अब किसका इंतजार स्टार्ट करो क्यों हिला दिया ना गदा हुसैन मला मोहम्मद बख्श मला नूरदीन अबड़ो और शाका अबड़ो विलेज आंदल खान भला से आप हमारा शो सुन रहे जी बिल्कुल आपने हिला दिया हमें और गाड़ी को हमने किक मार के स्टार्ट कर दिया मोहम्मद सलमान कुमर हमें सुन रहे हैं वालेकुम अस्सलाम कहते मुझे गाना सुना दें ओके आई ट्राई जैन अली कहते हैं कि हाँ मेरा इश्क सबसे जुदा ओके वासु भाई आ चुके वालेकुम अस्सलाम वासु भाई ऐसे ही आप सब लोग हमारी पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए और आप सारे लोग जो है ना हमारी पोस्ट को लाइक और शेयर करेंगे तो ये वाला फायदा हो जाता है कि बाकी बहुत सारे लोगों को हम अपना पैगाम पहुंचा पाते हैं कि भाई डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के जितनी प्रोडक्ट्स है ना चाहे आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगा रहे हैं या डी स्किन का फेस

0: वॉश लगा रहे हैं। ये दोनों प्रोडक्ट्स आपकी खूबसूरती के ऊपर जो है बड़ा बेहतरीन सा निखार लाएंगे। आपकी खूबसूरती के हिसाब से ही इन्हें तैयार किया गया है। तो आप दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हैं, चाहे हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल भी करा सकते हैं। तो जल्दी जल्दी से इस्तेमाल करते जाइए, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाइए और मुझे बताइए कि आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं और आप भी खूबसूरत, हसीन और प्यारे प्यारे बन चुके हैं। टाइम हुआ है जनाब शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का, जल्दी वापसी आप लोगों के पास आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा और जरा यूं जाकर यूं वापस आते हैं। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो।
1: It's 1:30 PM. This time check is brought to you by.
2: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाएं। आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो। आर्च ब्यूटी क्रीम।
3: अरे नहीं, खुश्क और बीरोनो की स्किन हर इमेज लाइट था डैमेज एंड डल स्किन के कयो आउट, पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम, जिनमें आहिन 4 रंग जो खूबियों ऐं कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जल्द के रिस्टोर करे उन जी नमी के लॉक करे, ऐं 4 रंग जो खूबियों जल्द मां फाइन लाइन एंड झुरन के घट कन ऐं रिंकल्स के घट करे सिर्फ 3 दिन में, जल्द के बढ़ाए नरम, मुलायम ऐं ब्राइट। उन सां गरुगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम, जैं जी हर कतरे सां चेहरे के मिले वधीक खूबसूरती, हर भी रहो ब्यूटीफुल। सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम, अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
4: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां, हर क़िस्म जी परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। प्रोडक्ट बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान। जिंदगी गुजारियो एतमाद सां, कुरान खे समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान, रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
5: अभी बुधो पिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
6: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
5: सिंध जो आवाज बुधंदा।

वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जीएफएम 88 नेटवर्क। हमारे साथ मौजूद है जनाब सखर मोरो मिरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर नूरियाबाद और लाड़काना की लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल जी, यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपकी स्किन के लिए किस तरह से काम करेंगे और किस तरह से आपके चेहरे के लिए बहुत ज्यादा। हमें जरूर बताया करें ताकि हमें पता चले कि जितनी भी सुनने वाली समाज है वो सब लोग डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज करके अपनी खूबसूरती में इजाफा ला चुके हैं ऑलरेडी। ओके जी, अगर आप मर्द हजरात हैं, खवातीन या आप सब लोग ही ट्राई कर सकते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बगो को बताती चलो। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम की ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है एक मेडिकेटेड फार्मूला है। मेडिकेटेड फार्मूला वो होता है जो कि आप लोगों के लिए तैयार किया जाता है, या कि जो स्किन से रिलेटेड डॉक्टर्स होते हैं ना, उन्होंने मिलकर आप लोगों के लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम तैयार करी है। लेकिन साथ साथ अगर बात करेंगे भाई इसके अंदर क्या चीजें एड की गई है, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर वाइटामिन ई बीट्स हैं, माइक्रो बीट्स हैं, अल्फा आर्बुटीन है, कोजिक एसिड है, ग्लूटाथायोन है, ये तमाम चीजें ऐड की गई है जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर, जो कि आप लोगों के चेहरे के अंदर तक जाकर आपके चेहरे को देती है ऐसा निखार, ऐसी खूबसूरती जैसे आपने कोई महंगा स्पेशल कराया। यानी कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ये 2-in-1 फार्मूला है, तो आपको जो रिजल्ट्स मिलने वाले हैं वो ऐसे मिलेंगे जैसे आप कोई महंगा सा फेशियल करा के आए। तो चाहे आप मर्द हजरात हैं, चाहे आप खवातीन हैं, आप सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम। आपके चेहरे पर जितने भी डार्क स्पॉट्स होंगे या फिर जितने भी क्रेकल्स हैं, रिंकल्स वगैरह हैं, वो चीजें भी खत्म हो जाती हैं, आपके चेहरे की स्किन जो है वो ग्लोइंग हो जाती है और आपको रिजल्ट्स भी मिलते हैं ना, अच्छे वाले रिजल्ट्स, परफेक्ट वाले रिजल्ट्स, वो सिर्फ और सिर्फ 2 रातों के इस्तेमाल से मिलते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पास कोई अच्छा सा प्रोडक्ट होना चाहिए, कोई ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो कि इस्तेमाल करके आप अपनी खूबसूरती को, यानी कि आप अपनी खूबसूरती की हिफाजत कर सके, तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर सकते हैं। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम की ये खास बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम को आप सारे लोग ही लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि भाई बाउंड्रीज रखी गई है कि हाँ लड़कियां लगाएंगी, लड़के नहीं लगाएंगे, या लड़के लगाएंगे, लड़कियां नहीं लगाएंगे। यहाँ पर ऐसा कोई भी सीन नहीं है। अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करने वाले हैं तो आप चाहे लड़के हैं, लड़कियां हैं, सभी लगा सकते हैं। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना, खूबसूरती को मजीद निखारने के लिए आप ऐसा कीजिए, अपनी रोजमर्रा की ब्यूटी के रूटीन का हिस्सा बना लीजिए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप यूज करेंगे तो आपको जनाब इतना प्यारा निखार मिलेगा, इतनी प्यारी जो है ना आपको खूबसूरती मिलेगी। इसका जो नरम और खूबसूरत एहसास है ना, आपकी स्किन के रूटीन को मजीद खास बना देता है, आपकी स्किन साफ सुथरी हो जाती है और अच्छी तरह से आपकी स्किन हमेशा मॉइस्चराइज रहती है। आपकी जल्द की शख्सियत जो है ना, वो ऐसा फील होता है कि भाई ताजगी का एहसास हो चुका है, आप हमेशा रिफ्रेश जो है ना वो फील कर रहे होते हैं। आपकी स्किन जब फ्रेश होती है ना तो आपको अच्छा महसूस होता है, आप कहीं जा पाते हैं सुकून से और आपको एक तसल्ली सी होती है कि भाई हमारी स्किन जो है ना अब बड़ी अच्छी है, क्योंकि आपके चेहरे पर कोई भी इस तरह का एक्ने नहीं बचा, कोई भी इस तरह का निशान नहीं बचा, कोई भी रिंकल नहीं बचा। अब आप अपनी उम्र से बहुत छोटे लगने स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर आप भी ट्राई करना चाहते हैं कुछ अच्छा, कुछ अफोर्डेबल और कुछ ऐसा जो कि भाई बहुत प्रीमियम क्वालिटी वाला प्रोडक्ट हो, तो आपके पास डी स्किन ब्यूटी क्रीम मौजूद है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको डी स्किन का फेस वॉश करें, वो चीजें आपको साथ में मिल जाएगी और साथ में जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको क्या ही कमाल के, क्या ही वाओ वाले जो है ना वो रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। क्योंकि अगर आप क्लीन रखते हैं, मॉइस्चराइज रखते हैं, हाइड्रेट रखते हैं, तो आपके चेहरे पर जो ना ग्लो और निखार आना स्टार्ट हो जाता है। आपके चेहरे की स्किन जो है ना वो भाई अच्छा फील करेगी, तो जाहिर सी बात है आपकी स्किन पर जो प्रॉब्लम्स आ जाते हैं ना वो भी नहीं आएंगे। तो बिल्कुल अपनी स्किन को अच्छा फील कराइए, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स लगाइए और अपनी जरा जो है ना खूबसूरती का स्टैंडर्ड जरा हाई रखा करें। ऐसा नहीं कि आपको जो भी बताया जाता है, जो भी प्रोडक्ट बस आप लगाना स्टार्ट कर देते, महंगे महंगे महंगे महंगे फेशियल्स कराने जब महीने महीने में कराना है, लेकिन ऐसा कि आप बस मार्केट जाइए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज कीजिए, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना आप घर बैठे लगा सकते हैं। डी स्किन ब्यूटी क्रीम का ये वाला फायदा आपको मिल रहा है कि एक तो ये मुनासिब पैसों में आपको मिल रही है, दूसरा आपका टाइम भी बच रहा है और दूसरा से भी बहुत अच्छा। तो डी इसका फेस वॉश हो ये और खूबसूरतियां हासिल कर बाद ही पांचे करीबी समझो। अगर तहां पांचे खूबसूरती जो ख्याल न रखना ना, तो दुनिया भी तवा की ये समझती तो तवा ई आयो बस। भाई अपना ख्याल रखिए, अपनी खूबसूरती का ख्याल रखिए और अपनी खूबसूरती को सबसे आगे रखा करें। और इनका अलावा अगर तव प्रोग्राम में मौजूद है तो आखिर चौदह भली करे आया खोड़ सारी गालियों आयन जी तवा से कदासी।

एडी कोई सजा तमहां जे ज़हन में आहे बबल 81 फेसबुक ते तामो के जॉइन करना हलो था तमा जा फीडबैक्स बिल्कुल मुखे मिलन पया पैनल ते भी तमा जा मैसेजेस आहे पर हते कमेंट आहे जी मां जल्दी कमेंट नला पढनिया वरना ता जा कमेंट जगे ना वो मथे भजी वेंदा है। सो मोहम्मद जमान भाई मेरे साथ मौजूद कहते हैं गुड आफ्टरनून एंड वेलकम माय स्वीट बुआ जी, आपको भी वेलकम कहते हैं प्यारे भाई। अच्छा हिदायतुल्लाह, हाँ वैसे मुझे ज्यादा याद नहीं है। और किशोर भाई हमारे साथ कहते हैं सलाम मुझा खूबसूरत अदा वालेकुम अस्सलाम मुझा सोना अदा। जेन कहते हैं कि तेरे होने से हसीन है ये कहानी दिल की, तेरे होने से है आबाद फसाना दिल का। अरे वाह क्या बात है। और तारिक भाई लिखते हैं कि घोटकी में हमारे दोस्त सदानी ट्रेडर्स घोटकी, दीपक भाई, शकील, ऋतिक, मोहन, अकबर अली दोस्त हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, गुर भाई प्रोडक्ट्स एंड वाइट जाकर यानी कि से जाकर आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड वाइट टेस्ट, इन तमाम भाइयों को इरफान सियाल साहब कहते हैं कि सलाम मैम, दीपक डिस्ट्रीब्यूटर घोटकी से हाई और उनकी ट्विंस डॉटर्स हैं वीरा एंड वीरता, क्यूट प्रिंसेस माशाल्लाह। ओके जी, दोनों परियों के लिए प्यारा सा गाना लगा देंगे, दीपक भाई को भी डेडिकेट कर देंगे आपकी तरफ से। और बहुत शुक्रिया सर आप हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक भाई माशाल्लाह बहुत मेहनत कर रहे हैं और सासा जो है ना उनके लिए ढेर सारी दुआएं। और ये मेरे पास एक बड़ा प्यारा गाना मौजूद है, मैं सोच रही हूँ कि हम सब मिलकर एंजॉय करेंगे, लेकिन ये वाला गाना हम महर इरफान सियाल साहब की तरफ से दीपक भाई को डेडिकेट कर देंगे। उनकी जो प्यारी सी दोनों डॉटर्स है ना वीरा एंड वीरता, उनको भी डेडिकेट करते हैं। माशाल्लाह खुश रहें और एंजॉय करें। Whitish and DSK Beauty Show is sponsored by DSK Beauty Products and Whitish Beauty Products.

बहुत प्यारा बहुत सुंदर गाना है जो कि मेरा बहुत फेवरेट है और इसी के साथ साथ आप सुना रहा है तो डी स्किन ब्यूटी रहा है तो जो लोग ऐसा होता है ना कि क्रीम ही नहीं लगा पाते इस वॉश भी यानी कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन तो उसकी

मजा था कबाब पर डीज पिन ब्यूटी क्रीम लगाए पो कमा लगाई कौन बुधाईंदा हेलो मुख्य मीर मुमताज विरोही भाई वालेकुम असलाम देते हैं ब्यूटी शो आपका अच्छा है स्किन केयर करनी चाहिए नाइस है वोट दाद मोहम्मद विरोही मदेजी से मीर मोहम्मद विरोही अशफाक अली विरोही सजाद अली विरोही भाइयों को वेलकम कहते हैं वासा भाई कहते अदी सिधो जवाब एक दफो अबे सजा दिनी हुई बदी छो हुए पूरो कलाक अदी आई मामा ही चाचा सिन गोशी कराईंदा हुआ अच्छा ये तो वैसे आम सी सजाएं है मुझे लग रहा है कोई ऐसी सजा बताएं जो आपको मिली अपने बचपन में आपको लगता है कि ये थोड़ी वक्री सजा है भाई अच्छा निसार भाई हमारे घुनी वाले लिसनर थे अब उन्होंने अपनी खामोशियों को तोड़ लिया है अच्छा किया है आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं थैंक यू बस आप एक काम कीजिएगा आप दी स्किन ब्यूटी की फेस वॉश भी मिल रहा है तो वो भी आप परचेज कीजिएगा दोनों चीजें साथ में लगाएं ताकि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते रहे दोदा हालिया में सुन रहे हैं हेलो भाई अच्छा गदा भाई कहते हैं गदी सिद्रा देख लो आपका प्रोग्राम चल रहा है लेकिन अभी मोरो वालों ने आपका प्रोग्राम बंद कर दिया है अब आपका प्रोग्राम कैसे सुने मोरो वालों ये क्या है पहली शिकायत आपकी मुझे मिली है मोरो वालों की तो मैं तारीफ करती हूँ मोरो वाले जो हमारा अच्छे से प्रोग्राम कनेक्ट करते हैं भाई तुम्हारी शिकायत है न मिलन गुर्जे सही प्रोग्राम कनेक्ट करो अदा मोरो वालो अच्छा रमजान भाई भी आ चुके हैं वालेकुम अस्सलाम रमजान भाई थोड़े शॉर्ट शॉर्ट से कमेंट्स लिखा करें इतनी लंबी चौड़ी शायरियां भेज देते शायरियां जो है ना वो 5 बजे वाले प्रोग्राम में भेज दिया करें

किशोर भाई कहते हैं की अदा शमन जो गानो बुधराए फकीरानी तबियत जो मुखे दिल बर मिली वो ओके डेडिकेट टू माई स्वीट वाइफ छा गाल कजे भाभी के डेडिकेट वास साईं वास भाई कहते अदी नंढपण में ना वो शरारती हुस घर वारन सा कावड़ कंदो हुस वो घर जो ज्ञान कंदो हुस आईली वो कुटकी भी जाम खाईंदा हूंदा छॾे त कोन ॾींदा हूंदव घर वारा अच्छा दाऊद अली पताफी भाई हमें सुन रहे हैं वाले कराची से आप हमें ज्वाइन करते हैं। अच्छा दाऊद भाई लिखते हैं कि इस मतलब की दुनिया में तो मोहब्बत को बर्बाद करने की वजह मत ढूंढ यहाँ पर बनाए बैठे वफा बनाने की वजह मत ढूंढ सब सुनने वालों को मेरा सलाम वालेकुम अस्सलाम जी समाटू तांचो खानो भी और ये जी अरबेलो चाचड़ भाई घोटकी से मैं सुन रहे अरबेला भा तां घोटकी मां जेको आहे डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठी सघो था घोटकी में तव्हां जे लाइ डी स्किन ब्यूटी क्रीम असां अवेलेबल कराए छॾी आहे तो घोटकी में दीपक भाई वेठो आहे उन वटां तव्हां डी स्किन फेस वठा चाचा खालिद कहते हैं तो हसून थे यो टॉपिक आंसर क्या बातें चाहूं मिलन थी अरे बाबा केर चाचा के सजाऊं दे तो

0: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की से
1: 91.6।
2: अब थोड़ा मीट हाँ तो और सुपर वाइट की और फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
3: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
4: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
3: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
2: अच्छा वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है।
4: सुपर वाइट
5: खुशखबरी। हाने अवां के परेशान थियण जी का भी जरूरत न आहे। जेकर तव्हां कंहिं भी बीमारी हो या बीमारी पुराणी थी वई आहे त उन बीमारीअ जो इलाज हैदराबाद निकते सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक। हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल नवाबशाह। मरीजन जो चेकअप केतराई मरीज सेहत फीस सिर्फ 300 पिण मौजूद। क्लिनिक जो सुबुह जो 10 बजे अगे ताई जुमो मोकल आयस सिंध होम्योपैथ रोड बैंक जे सामाबाद। वधिक राब्तो करियो 244-77।
6: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

हाजी स्किन के लिए रुकन नौ गिलो एच आई वाइट एज ब्यूटी क्रीम अब हाजी स्किन के बनाए फ्रेश सॉफ्ट एंड ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो।

ॾींहं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमालु करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज़। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

या कोई भी तव्हां जो कम आहे, तव्हां जे पर्स में बस वाइट इज लवली क्रीम हुजे, यानी कि सफ़ा मेकअप वारो फार्मूलो अची वेंदो तव्हां जे चेहरे ते, ऐं तव्हां खे ख़बर पवंदी त एतिरो ज़बरदस्त हिकड़ी लवली क्रीम तव्हां खे निखार ॾे वई त तव्हां उन खे इस्तेमाल करे पंहिंजे ख़ूबसूरती में इज़ाफ़ो आणे सघो था। वाइट इज जेका लवली क्रीम आहे न, बाबा रेडियंट अल्ट्रा वाइटमिन जो फार्मूलो आहे, जंहिंजे अंदर 30 वाइटमिन्स एड कया विया आहिनि। इन लाइ एड कया विया आहिनि त तव्हांजे स्किन ते जेके वाइटमिन जी कमी हूंदी आहे न, उहा पूरी थींदी रहे। वाइटमिन की कमी जब पूरी होती रहेगी तो आपके चेहरे पर निखार और खूबसूरती तो खुद ब खुद आता जाएगा। तो व्हाइट एज की लवली क्रीम ये एक फेयरनेस फार्मूला है। जो लोग फेयरनेस क्रीम में लगाना पसंद करते हैं या जिनके चेहरे पर ऐसा होता है कि आप मेकअप नहीं लगा पाते, मेकअप से ऐसा होता है ना कि भैया आपकी स्किन मजीद खराब हो जाती है, खास करके सेंसिटिव स्किन वालों, तो मेकअप अगर आपके चेहरे पर सूट नहीं करता तो बस सिर्फ आप जो है व्हाइट एज लवली क्रीम लगा लीजिए, आप मिनटों में रेडी हो जाएंगे, चुटकियों में रेडी हो जाएंगे और आपके चेहरे पर एक प्यारा सा निखार भी आ जाएगा जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ व्हाइट एज लवली क्रीम से मिलने वाला है। तो व्हाइट एज की लवली क्रीम तो बिल्कुल आप लगाएंगे, साथ साथ आप लोगों के लिए ये भी पता होना चाहिए कि अब सर्दियां आ रही हैं तो व्हाइट एज का जो है ना वो आपके लिए लोशन भी मौजूद है। और लोशन जो है ये भाई ट्रिपल वाइटमिन का फार्मूला है और ये बड़ा आपकी स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ बना देगा। तो जिन लोगों को लोशन चाहिए होता है, खास करके हमारे चाचे को तो चाचे को जो हमारा लोशन चाहिए तो वो आप जो है व्हाइट एज का लोशन ले सकते हैं जो कि ट्रिपल वाइटमिन से बना हुआ है और इसके अलावा आपकी स्किन मॉइस्चराइज कर देगा। और साथ साथ जो है ना हेयर रिमूवल लोशंस भी हैं जो कि व्हाइट एज के अंदर मौजूद है, 3 अलग अलग वेरिएंट्स के अंदर आपको ये मिलते हैं। दूसरा जो है वो जनाब रोज का वेरियंट है और तीसरा हीरे का वेरियंट है। ये तमाम चीजें हैं व्हाइट एज के, मतलब मुझे लगता है व्हाइट एज वालों ने कोई कसर नहीं छोड़ी भाई, आप लोगों के लिए हर तरह का प्रोडक्ट रेडी कर लिया है ताकि अगर आप मार्केट जाएं तो आप लोगों को परेशानी ना हो, बस आप जाएं और अपने हिसाब वाला प्रोडक्ट परचेज करें और खूबसूरती का जो है ना दरवाजा आपको मिल जाएगा। अब हमने खूबसूरत होना है, बस ये हमारे हाथ में प्रोडक्ट है और अब हम इसे लगाएंगे तो खूबसूरत हो जाएंगे। जल्दी जल्दी से व्हाइट एज के ये तमाम प्रोडक्ट्स लगाइए, आप पिक कीजिए आपको कौन सा प्रोडक्ट आइए और कौन सा प्रोडक्ट आपकी खूबसूरती के हिसाब से है। जो व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम हो, व्हाइट एज सोप हो, व्हाइट एज का फेस वॉश हो, डॉक्टर पिंपल ट्यूब हो या फिर व्हाइट एज लवली क्रीम हो या फिर लोशन ही क्यों ना हो, ये तमाम प्रोडक्ट्स आप लोगों की खूबसूरती में इजाफा लाएंगे, आपको हसीन प्यारा खूबसूरत बना देंगे। ये जनाब लगाने के लिए और साथ साथ अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर मंगाने के लिए आपको जो नंबर्स बताए जाते हैं उनके ऊपर भी राबता रखा करें और कॉल या फिर मैसेज करके उनको बता दें कि आप भी परचेज करना चाहते हैं व्हाइट एज की तमाम रेंज को और डायल कीजिए 0332738 4309। बुरी 332 है 73 84 309। नंबर आए 03-12-50-25-907। बुरी 312 50-25-970।

ने ढो भलो गानो हलाया हुमेरा चना की आवाज में सहरो आए वैसे ही सहरो असा के हिदायत अला फरमाइश कई अला कें शादी तो कराई तहजी तो नी थे न मत थी भी सके तो थी तो असा प्रोडक्ट जो इस्तेमाल कया है चाहे वही डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हुजन या वही वाइटी सब प्रोडक्ट्स हुजन बाबा जी तुम इस्तेमाल कर खबर पड़ी तो वाकई खूबसूरती का थी लिखल हुई। अच्छा ये पैनल की तरफ अचूँ तो तवजा खोड़ सारा मैसेजेस जमा थी वह सो पढ़ी वेठा।

स्किन ब्यूटी क्रीम ब्यूटीफुल है, मैं और मेरी पूरी जो फैमिली ना वो यूज करते हैं, रिजल्ट बहुत अच्छा मिला है। सॉन्ग आपकी पसंद का एंड सिंगर हमारी पसंद, सिंगर फैजाली डेडिकेट आपको और डेडिकेट किया है नोरिन कराची वाली को, डेडिकेट चाचा को डेडिकेट। वाह सही वाह सही, गोले गोले डेडिकेट क्यों था। अब्दुल्ला भाई आपको वेलकम कहते इस्तेमाल करते हैं और बाकी जो लोग व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज कर रहे हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज करते रहिए। अल्लाह आपको खुश रखे, प्रोग्राम इज वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच प्यारा सोना भा तांजो मोहब्बत हुआ है। और मोरो से महबूब अली भाई तमाम भी चाहिए था बाबा मोरो जी जो रेडियो ते प्रोग्राम थोड़ो सही न पो हले इन लाइ मु मैसेज करे छो आए अल्लाह कंदो सही थी। चाचा कहते हैं सोन की रुके बिल्कुल चाचा तांजो गानो हलाए वेठूं था। मकसूद मना हमें सुन रहे हैं मेहरापुर से, कहते हेलो हेलो जी मैं भी तो आप आदाब से सारे। ये आपने शायद शायरी लिखी लेकिन शायरी की टांगे वांगे तोड़ दी आपने, तो उसको हम पढ़ना जो है ना वो थोड़ा सा स्किप कर देते हैं। बाकी छोटा सिद्रा मुस्कान जी सिंधी सिंधी मुझे भली आए छोटो का जो कंधा है मुझे सिंधी थे। और हमारे साथ ही शिपाल भाके थे टॉपिक भाव जी, बचपन में एक गलती हुई थी तो मेरे पप्पा जी ने हुक्का पानी बंद कर दिया था, मैंने पूछा कितने दिन मंथ के लिए, हमारे मॉम ने साथ दिया एक मंथ खर्चा बंद किया वक्त था वो भी। क्या बात है जी, मेरे को लगा खाना पीना बंद कर दिया लेकिन खर्ची बंद, सही सही खर्ची टेंशन ना है बाबा, खाना पीना

हाँ भाई मुखे ना ही दरअसल की भाभी मिली जी तबियत जो फकीरानी है असि भाभी वाकई दादी भली है वो भली इन ला आया तो हुए वाइटिंग से प्रोडक्ट इस्तेमाल कंदी है कहना वैसे तबियत में भाभी दादी भली है अल्लाह सही खुश रखे तीन जोड़ी सलामत हुए ईअं प्रोडक्ट इस्तेमाल कंदा रहो उन अलावा जिन माण्हुनि असांजी पोस्ट खे लाइक एंड शेयर नाहे कयो बाबा छो कंजूसियूं कंदा आहियो असांजी पोस्ट खे लाइक एंड शेयर कयो जवेरिया असांजो प्रोग्राम ॿुधे पई लाड़काने खां जवेरिया तव्हांखे चवंदा भली करे आया और हमारी प्यारी दिल रुबा भी हमारे साथ मौजूद और मौजूद ईजी ये वालेकुम असलाम हैदराबाद जी में मंसूर अली अकरो शरीफ से टॉपिक आंसर में स्कूल में नहीं जाता था तो सजा मिलती थी सलाम अनोमान और जुनेद हिंगोर शाह राशिद शाह को और अहमद मुगल का गाना सुना दीजिएगा शो शो आपका बड़ा वीआईपी हो रहा है ओके जी बहुत शुक्रिया भाई आपको वेलकम इन खुशामदीद कहते हैं।

अच्छा अली रज़ा लगाड़ी भाव ये गानों हले पे शमन जो एंजॉय करे बैठो मुगल उमरानी भा से संगत मौजूद आए थैंक यू हजार भाई हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं वालेकुम असलम प्यारा भा वेलकम कहते तमाम को और नजर मोहम्मद भट्टी भाई है हेलो जी मैं ठीक हूँ तामुदा की आयो आतिफ असलम का गाना सुनना चाहते हैं मटियारी से आपने मुझे ज्वाइन किया है मैं आपको वेलकम कहती हूँ आपका गाना लगा देगा और उन्होंने कहा अलावा दर्दे दिल आ चुके कहते हेलो हटो हटो मुझे आने दो जरा वालेकुम असलम चंदा जानी कैसी हो मैं बहुत प्यारी आप बताएं

0: जियो कवेश गाना इंजॉय कयो गाने सां गॾु गॾु असां वञूं था शॉर्ट कमर्शल ब्रेक जी तरफ़ नंढड़ा ब्रेक हूंदा मोटी नासी बाबा ओ हीअं वञी ओ हीअं मोटी पोइ कॾहिं ॿुधंदा रहो
1: जी हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज़ ॿुधंदा रहो
2: इट्स 2:30 PM दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
3: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए आर्च ब्यूटी क्रीम एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो
4: अरे न ऐं बीरोनो की स्किन डैमेज इहो की जिन ब्यूटी क्रीम जंहिंमें आहिनि 4 रंग जूं खूबियूं ऐं कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द खे रिस्टोर करे हुन जी नमी खे लॉक करे ऐं चांवरनि जूं खूबियूं जिल्द मां फाइन लाइन्स ऐं झुरनि खे घटि कनि ऐं रिंकल्स खे घटि करे सिर्फ 3 ॾींहनि में जिल्द खे बणाए नरम मुलायम ऐं ब्राइट उन सां गॾो गॾु सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जंहिं जी हर कतरे सां चेहरे खे मिले वधीक खूबसूरती हर ॾींहुं रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स
5: खूबसूरतीअ जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ 2 ॾींहनि में डार्क स्पॉट्स खे करे ॾिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर ॾींहं जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान जिंदगी गुजारियो एतमाद सां कुरान खे समझी ॿुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान 88
1: अभी ॿुधो पिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज़
6: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
1: सिंध जो आवाज़ ॿुधंदा रहो

0: घनो वा ओ दुश्मन पियो थो जलाए मुले इहो ई घनो
1: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

चाहे 03-12-50-907 बुड़ी 312 हाँ 50-25-970 ही नंबर सां जे के तमा डायल करे पांजे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराए सगो था आई वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट जो जेको भी प्रोडक्ट तमा के लगे सां जे हिसाब वारो आए तमा उन के परचेस कयो आई पोई तमा इस्तेमाल कयो ठीक है तमा के सफा भला रिजल्ट्स मिलन थिंदा रहंदा।

जयपाल भाई हमारे साथ हैं। जयपाल भाई क्या कहने आपके, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और बिल्कुल ऐसे ही आप व्हाइट एज की लवली क्रीम लगाते रहिए और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी आप लगा सकते हैं, जो भी आपका दिल करे वो लगाए, क्योंकि ये बहुत ही सेफ प्रोडक्ट्स हैं जिनका इस्तेमाल आपकी खूबसूरती में इजाफा ला देगा। कहते हैं अल्लाह मालिक है बाकी ठीक है ठीक है। और ये हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम आपी सदरा, आप कैसी हो? माय नेम इज तहमीना आपी, एक राज की बात बताऊं। अच्छा कहती है कि जब आप सिंधी बोलती हैं तो मुझे लगता ही नहीं कि आप सिंधी बोल रही हैं। आप बहुत ही कमाल की आ रही हैं। और टॉपिक का जवाब है कि जब बचपन में अम्मी आती थी तो समझ ही नहीं आती थी, तो अम्मी चांटा मारती थी। ओके उन्हें जो पोए असर लगे तो हले तो आई तवां तमीना ब मैसेज कया नहीं सेम तवां जब मैसेज अच्छी हुआ ना सांजे पैनल से। सो थैंक यू सो मच सोनी तां से सगर मौजूद है तांजो मोहब्बत हुआ बाबा ये कदे कदे पांजे हुजन जो सबूत दई सडींदा कयो। और हमारे साथ जुलरी खां खालिक लाशारी शो वीआईपी आए, थैंक यू वेरी मच खालिक भाई। अच्छा मैं कोशिश क्या थी लास्ट में का जयपाल भाई पोइट्री तक बुधाए वम दिस टाइम बची हो तो इलाही सारा कॉमेंट जमा थी वन ली मथे भजंदा था वन ओ ये भजंदा था वन। अच्छा हमारे साथ ही गुल यासीन नाज भाई आपको वेलकम हो गया। चाचा कहते हाँ लोशन में लगाऊंगा, बिल्कुल आप लोशन जाइएगा परचेज कीजिएगा, व्हाइट एज का आपको लोशन मिल रहा है, बहुत ही कमाल का लोशन है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कहते हैं कि या तारिक भाई को बोल दें, भाई तारिक भाई को बोल दें तारिक भाई। और गदा हुसैन कहते हैं कि वन्य अच्छा कहते हैं आज डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाई, मुझी शादी थी रही आहे, कल आपने दुआ की काम दिखा दिया। भाई आपकी दुआ दिसो मुझी दुआ के लिए फास्ट सर्विस बाकी मुझी दुआ असर कंदी तो दिसो ता कल मुखे चयो दादी मुझी शादी न पई थी जैसे भी डेट फिक्स थे थी तो कुछ न कुछ फैमिली में थी वेंदो आहे। आई तवां जी दिसो हाने शादी थी वेंदी इंशाल्लाह खैर से तवां जी शादी थी वेंदी ता ओतरे डीन में ता डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कंदा रहो ठीक है। आई वरी तवां जदे व्हाइट एज जो ही फार्मूलो ट्राई करे दिसना न ता के इनमा भी भलो रिजल्ट मिली वेंदो, सो ता लगाई दरो शादी तई सफाई पप्पू थी वने। जी वैसे हिदायतला सही बात है, शादी वाले गाने सुनकर मजा ही आ जाता है। मोहम्मद जमान भाई जियो करे इससे। दर्दे दिल कहती है कि मानना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक देख और मेरा इंतजार देख। वाह साई वाह वाह साई वाह। अच्छा एसन अली भुक्टी हमें लालकाना से सुन रही है, एसन भाई आपको वेलकम हो गया। फराज दहरी सुन रही है, कहते हैं मजहर और मजहर की तरफ से सलाम, सो वालेकुम असलाम दोनों भाइयों को।

अली गबर भाई हमें सुन रहे हैं, विलेज मोहम्मद उस्मान गबर, जुल्फकार अली गबर, अली दोस्त गबर, प्रोग्राम बेहतरीन, थैंक यू वेरी मच प्यारा भात। हम पाने गोठन में भी वाइटेज प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराए सको था।

वणी पियो गाना वणन पया सो बाबा बिल्कुल ही असान जो सोनो प्रोग्राम आए जेंगे तमा बुधंदा आयो जेमे तमा के खूबसूरती जा राज भी बताया वेना है। किशोर भाई कहते हैं कि मोते कावर कर हां बेहतर आहे डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगायो ओ इहा गाल

डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाया बाबा जी सोना थी बना। और गदा भाई कहते हैं कि सदरा देख लो आज मैंने आपको तकरीबन 10 मैसेज किए लेकिन आपने मेरा एक भी मैसेज नहीं पढ़े, सारे पढ़े लेकिन ये अलग बात है कि आपने सुने नहीं होंगे अपने मैसेज। तो प्रोग्राम जब मैं कर पोस्ट हुए ना उस पर पड़ी होती है तो आप वो सुन लीजिएगा ठीक है। गंदे दिल कहती है कि मैं बहुत मासूम थी तो मुझे कोई सजा नहीं मिली। क्या आप ऐसे कोई काम करती नहीं थी कि आपको सजा मिली ऐसा है ना। अच्छा चाचा तुम्हारे को गानो चाहिए ना वो एड़ो गानो जो को 5 बजे वाले प्रोग्राम बुधना सिंह ठीक है। चोरी चोरी चुपके चुपके समझी उन्हें पाना।

हज़ार भाग्य दे साढ़ा हक एथे रखमावी तयो जवान थी वन्यो आई पांजे पांजे हिसे जी ब्यूटी प्रोडक्ट्स परचेज करे छो तवा केड़ो भी प्रोडक्ट वठी ना वो तवा जे खूबसूरती में चार चंड लगाए छे कम कयो था को जॉब ला व्हाइट एज लवली क्रीम सफा बेस्ट रंदी बाबा व्हाइट एज लवली क्रीम एक फेयरनेस क्रीम आए जेका तवा बस ये चेहरे ते लगाए छरिंदा ता चुटकिन में रेडी थी वेला आई व्हाइट एज लवली क्रीम जेका ये तवा जे चेहरे ते जेको ने ये भी थिनो ता पघर भी इलाई लवली क्रीम अगर ता लगाइंदा हो ता चेहरे ते पघर निकरी इंदो आ निशाने निशाने ठई वेना है ता जदी ता व्हाइट एज लवली क्रीम लगाइंदा ता एड़ो को भी सीन न थिनो आई तवा जी स्किन सफा स्मूथ हुंदी थी चेहरे ते जेको ने कड़ी शाइनिंग अची वेनी जदी ता व्हाइट एज लवली क्रीम लगाए करे बाहर निकरंदा ता मानु ता का पुछंदा आए हाय चमको प्या।

ॿुधायो बाबा इहो कहिड़ो प्यार आहे तव्हां वाइट ई सां प्यार कोन पिया वठो इहे मोहबतूं न आहिनि बाबा मोहबतूं दोनों तरफ़ से निभाई जाती है समझो था न ऐं रिहान खान खोसो भाई में सुन रही है वालेकुम असलाम प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा है उसके लिए बहुत शुक्रिया मुमताज़ मलिक जो गानो बिल्कुल तव्हांखे ॿुधायो थी रमज़ान भा तव्हांजो गानो जेको 5 बजे वारे प्रोग्राम ॿुधंदा ठीकु आहे मरियल गाना 5 बजे प्रोग्राम फरमाइश कंदा कयो और फराज डहरी कहते हैं क्या कमाल की क्रीम है हाँ ना वही तो बताते हो बस अलग आला तुम लगाईंदा ना है लगाए ऐसो सोना थी अच्छा फहीम शेख भी आ चुके हैं फहीम भाई कहते हैं कि खुद में खामियां हैं और दूसरों से जलते हैं चेहरे धो नहीं सकते आईने बदलते हैं वाह वाह वाह वाह वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम यारे भा के चौदह भली करी आया अला सुमाटो के थी वही आने क्या पर तव्हां वाइट ई जो प्रोडक्ट लगाए तव्हांजी भी शादी थी वेंदी हजार भाई कहते हैं कि आपका शो रिकॉर्ड होता है एफबी पे सिस्टर फिर भी आप इतना बस ये भाई आप लोगों की मोहब्बतें होती है कि आप ऐसा समझ जाते हैं बहुत शुक्रिया थैंक यू ये आपका प्यार है अच्छा जी पाल भाई लिखते हैं कि सोच समझ कर रखना मोहब्बत की कश्ती में कदम सोच समझ के रखना मोहब्बत की कश्ती में कदम जब चलते हैं तो किनारा नहीं मिलता और जब डूबती है तो सहारा नहीं मिलता पोइट्री मैंने सुना दी अब आपकी बारी इरशाद इरशाद क्या जाए एक मिनट वेड़ो पानी सीट

हकों पर भी लुटा देते हैं जो उनकी कदर करना जानते ही नहीं। तो ये तमाम चीजें, किसी पर निशावर करने की कोशिश करें तो ये जरूर देख लें कि वो इंसान इन चीजों के काबिल भी है या नहीं, क्योंकि हम अपनी जिंदगी में बहुत कुछ ऐसे लोगों पर लुटा चुके हैं जो नहीं करना चाहिए था। तो कोशिश किया करें अपनी जिंदगी में अपना ख्याल रखें और अपने ख्याल के साथ साथ अपने चेहरे का भी ख्याल रखें। और व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते रहिए। बहुत सारी हमारे पास अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स मौजूद है जो कि आप लगाकर न सिर्फ खूबसूरती को हासिल कर सकते हैं बल्कि आप हमेशा के लिए हसीन भी बन जाएंगे।

मुझे हेदे होदे अलाई छाछा आई तबहा। अच्छा हाँ फहीम भाई गाना एंजॉय कीजिए और यहीं पर बस आप लोगों से लेते इजाजत वरी तो मुलाकात मुझे 5 बजे वाले प्रोग्राम में थे पे। सो फहीम भाई कह रही आपका अचानक ट्यून क्यों चेंज हो जाता है यदा खुश रहा कर ओके तांजो हुकुम यो उधायो और बस मोकलानिया ऐसन कहते ही मां भी बैठो हाँ पर खामोश कोई गाल न कोई गाल है न तो मुसता मूसा गाल है नहीं के बे के छड़े दियो बाबा। चलो 5 बजे वाले प्रोग्राम में मिलूं था पांजो ओ हिडो सारो ख्याल रखना किसी का गलती थी हो जाए तो माजरत केनो को मैसेज रेजी हो को गानो शानो रेजी हो तो बाबा माजरत कहूं था मोकलानी ना ही सिलसिला में सा सलामत अल्लाह हाफिज बाय लव यू ऑल एंड टेक केयर।

0: 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: It's 3 p.m. This time check is brought to you by
0: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN
3: सुपर वाइट एंड ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
4: और चयो आए त जिंदगी जो को भी मुतबादिल न आए। फोतन जे वारसन जी मदद कई वेंदी। CCPO पेशावर चयो आए त साने जे जिम्मेवारन खिलाफ केस दाखिल कयो वेंदो। गवर्नर राज एमरजेंसी की मंजूरी दई छी। फजल चौधरी

चंद सिंह गवर्नर राज वारो हुकुम पार्लियामेंट में पेश कयो। रिथ जी हिमायत में 214 ऐं मुखालफत में 56 वोट पिया। अपोज़िशन सख़्त इतिजाज कयो। कानून वारे वज़ीर सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ चयो त वफ़ाक़ी हुकूमत समूरा क़दम आइन ऐं कानून मूजिब खणी रही आहे। पार्लियामेंट जे इजलास दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जी अपोज़िशन लीडर महमूद ख़ान ॿिन्ही अॻवाननि हथ मिलाइण बाद शहर

0: खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी हाने अमा के परेशान थियण जी का भी जरूरत ना आहे। जे करे तव्हां कंहिं भी बीमारी में मुब्तला आहियो या बीमारी पुराणी थी वई आहे त उन बीमारीअ जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल नवाबशाह, मरीजन जो चेकअप ए इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिन। अल्हम्दुलिल्लाह केतरा ही मरीज सेहतयाब थी चुका आहिन। अवां बे एक दफो आजमाए दिसो। चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया। क्लिनिक में मेडिकल स्टोर की सहूलत पिण मौजूद है। क्लिनिक जो टाइम आई डी है हर छंछर का खमीस ताई सुबह जो 10 वगे का शाम 5 वगे ताई जुमो मोकला आहे। एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक, बदीन स्टॉप रोड, पुरानी सब्जी मंडी, एमसीबी बैंक जे सामू, नया पुल, हैदराबाद। वधिक मालूमात जे लाइ राब्तो करियो 0306244770।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ।
1: मोर को दिल्ली राणा, मोर को दिल्ली,
0: आवाज की डोर से बंधा हुआ।
2: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: It's 3:30 PM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए. आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्च ब्यूटी क्रीम.
2: अरे न खुश और बेरोनों की स्किन हर इन्हें जलाए छा डैमेज एंड डल स्किन के कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जंहिं में आहिनि चावरनि जूं खूबियूं ऐं कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द खे रिस्टोर करे हुनजी नमी खे लॉक करे ऐं चावरनि जूं खूबियूं जिल्द मां फाइन लाइन्स ऐं झुरनि खे घटि कनि ऐं रिंकल्स खे घटि करे सिर्फ 3 ॾींहनि में जिल्द खे बणाए नरम मुलायम ऐं ब्राइट उन सां गॾो गॾु सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जंहिंजी हर कतरे सां चेहरे खे मिले वधीक खूबसूरती हर हर ॾींहुं रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स
3: खूबसूरतीअ जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ 2 ॾींहनि में डार्क स्पॉट्स खे करे खत्म ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर ॾींहं जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
4: जिंदगी गुज़ारियो एतमाद सां कुरान

0: समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीम उल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज
2: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
1: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: मेहरान हुआ। आवाज की डोर से बंदा
1: FM 88 नेटवर्क सिंध की।

आप सुन रहे हैं जी एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: It's 4 PM. This time check is brought to you by
3: D Skin Beauty Cream, असली ग्लो हर दिया जोशो। A product by Biocon International Pakistan.
4: अब आप FM News।
5: स्कूल जी छित किरी पई, 34 शागिर्द 30 जणा दबजी फोत, 50 जख्मी। पुलिस स्कूल जे मत में वठी छड्यो। DC पिशावर चयो आए त मलबे हेठां दबियल खे बाहर कढियो। शहबाज शरीफ सदर आसिफ अली जरदारी

माल कंदो जस्टिस मुनी बख्तर सुप्रीम कोर्ट जो वक्ती चीफ जस्टिस तौर हलफ खी वरतो जस्टिस जमाल मंदो खे जस्टिस या आफरीदी अक्टूबर से वापस इंदो जज

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो जीए एफ एम 91.6।
1: इट्स 4:30 PM। दिस

0: जैक इज ब्रॉट टू यू बाय।
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाएं। आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो। आर्च ब्यूटी क्रीम।
2: अरे न खुश्क और बीरोनो की स्किन और इन्हें जलाए छा डैमेज एंड डल स्किन के कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जेह में आहिन चावरन जो खूबियों एक कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द के रिस्टोर करे उन्हें जी नमी के लॉक करे एक चावरन जो खूबियों जिल्द में फाइन लाइंस एंड झुरन के घट कर एंड रिंकल्स के घट करे सिर्फ 3 दिन में जिल्द के बढ़ाए नरम मुलायम एंड ब्राइट उनसा गरुगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जैसी हर कतरे सा चेहरे के मिले अधिक खूबसूरती हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
3: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
4: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
5: अभी बुधो प्या GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
6: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
5: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: खित्ते की बनी है आवाज,
0: GAFM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: किया है सिंधजी दिल ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी करो नहीं।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: It's 5:30 PM. This time check is brought to you by
2: अल हबीब रेमिट बैंक। अल हबीब, रिश्तों भरोसे जो।
3: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए। आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडिएंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो। आर्च ब्यूटी क्रीम।
4: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडिएंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां। हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट, हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क।

0: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ।
1: मोर को दिल्ली राणा, मोर को दिल्ली,
0: आवाज की डोर से बंधा हुआ।
2: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: आप सुन रहे हैं
1: DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: It's 6 PM. This time check is brought to you by
3: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
4: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
5: Brought to you by Super White Rice Collagen Beauty Cream. A product by Aksa Cosmetics Pakistan.
6: इसके ऊपर तीनों क्लासेस थी, 20 से ज्यादा बच्चे जो है इसमें शहीद हो चुके हैं और दूसरे भी इसमें शहीद हो चुकी है और 47 के करीब जख्मी है। 25 जो हमको शिफ्ट किया गया है लेडी रेडी हॉस्पिटल। 110 मैंने आपको बताया तीन क्लासेस थी उसमें बच्चे थे और अभी मजीद हमें खतरा है, अल्लाह ताला हाफ करे, लेकिन हालातों का खर्चा ज्यादा है तो शिफ्ट कर रहे हैं। कम गली है, रेस्क्यू में मुश्किल आ रही है तो कोशिश बढ़ती।
7: केपी जे शहर पिशावर में निजी स्कूल की छित किरी पई, 34 शागिर्दन समेत 35 जणा दबजी फोत, 20 जख्मी। पुलिस स्कूल के मालिक ए प्रिंसिपल के हिरासत में वठी छो। केपी हुकूमत साने की जांच लाए कमेटी जोड़े छी। वजी अजम शहबाज शरीफ वाक्य की रिपोर्ट तलब कर वरती। जख्मियों के बेहतरीन तिबी सहूलतों देण की हिदायत। CCPO पिशावर चाहे वाक्यो संगीन लापरवाही जो नतीजो है। सोड़ियन गिटियन में गैर मयारी स्कूल कायम कयो वे।

0: खुशखबरी खुशखबरी हाँ अवा के परेशान थियण जी का भी जरूरत न आहे। जे करे तव्हां कंहिं भी बीमारी में मुब्तला आहियो या बीमारी पुराणी थी वई आहे त उन बीमारीअ जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल नवाबशाह, मरीजन जो चेकअप ए इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिन। अल्हम्दुलिल्लाह केतरा ही मरीज सेहतयाब थी चुका आहिन। अवां बे एक दफो आजमाए दिसो। चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया। क्लिनिक में मेडिकल स्टोर की सहूलत पिण मौजूद है। क्लिनिक जो टाइम आईडी है हर छंछर का खमीस ताई सुबुह जो 10 वगे का शाम 5 वगे ताई जुमो मोकल आहे। एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक, बदीन स्टॉप रोड, पुरानी सब्जी मंडी, एमसीबी बैंक जे सामू, नया पुल, हैदराबाद। वधिक मालूमात जे लाए राब्तो करियो 0306244770।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: प्रिंट का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डिया जोशो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: अभी बुधो प्यार जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज
2: ओ पिता जा पिताई पिता ते बसे नूर मुझो तो
1: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: brought to you by Supervibes Rice Collagen Beauty Cream, a product by Aksa Cosmetics Pakistan.
2: तीन मंजिला इमारत थी, इसके ऊपर तीनों क्लासेस थी, 20 से ज्यादा बच्चे जो है इसमें शहीद हो चुके हैं और दूसरे 20 में शहीद हो चुकी है और 47 से करीब जख्मी है, 25 जो है उनको शिफ्ट किया गया लेडी रेडी हॉस्पिटल। 110 मैंने आपको बताया तीन क्लासेस थी उसमें बच्चे थे और अभी मजीद हमें खतरा है, अल्लाह ताला हिफाजत करे, लेकिन हालातों का खदशा ज्यादा है तो शिफ्ट कर रहे हैं। थोड़ी आपके सामने कम गली है, रेस्क्यू में मुश्किल आ रही है तो कोशिश करिए।
3: केपी जे शहर पिशावर में निजी स्कूल की छत किरी पई, 34 शागिर्दन समेत 35 जणा दबजी फोत, 20 जख्मी। पुलिस स्कूल जे मालिक ए प्रिंसिपल के हिरासत में वठी छड़ियो। केपी हुकूमत साने जी जांच लाए कमेटी जोड़ी छड़ी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी वाक़े की रिपोर्ट तलब करे वरती। जख्मियों के बेहतरीन तिबी सहूलतू डेण की हिदायत। CCPO पिशावर चयो है त वाक़ियो संगीन लापरवाही जो नतीजो है। सोड़ियन गिटियन में गैर मयारी स्कूल कायम कयो वियो।

0: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 7 PM. This time check is brought to you by
3: White Ish Beauty Cream, glowing skin jo raaz. A product by Bio Cooler.

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद सिंध जो आवाज,
1: धरती से खित्ते की बनी है आवाज,
2: जीए एफएम नेटवर्क
1: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज। अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियाई FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो
1: उसी खिते की बनी है आवाज,
2: ये
1: की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सुपर वाइब्स राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम
3: अ प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
4: जख्मी पुलिस स्कूल जे मालिक प्रिंसिपल की गिरफ्तार करे वरतो। केपी हुकूमत थाने की जांच लाए कमेटी गवर्नर फैसल करीम कुंडी मुतासिर स्कूल जो दौरो भी कियो। कोतियन जे वारिसन लाए 10-10 लख रुपया इमदाद जो ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ भी वाकिए की रिपोर्ट तलब करे वरती। जख्मियों के बेहतरीन तिबी सहूलतों देने की हिदायत। सीसीपीओ पेशावर चयो है तो वाकियो संगीन लापरवाही जो पेशावर में स्कूल जनाज़े नमाज अदा अंग में शिरकत सदर वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो ज़रदारी बेन पारां साने ते दुख जो इज़हार।
5: मेंबर ऑफ द मोशन रोज अगेंस्ट द मोशन।
4: पार्लियामेंट खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर आज एमरजेंसी की मंजूरी दे छी। अपोजिशन जो सख्त एहतजाज हुकूमत खिलाफ नारेबाजी। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी पारा केपी गवर्नर आज वारे पेश कल रिथ अक्सरियत राय से मंजूर कई वही। तहरीक की हिमायत में 214 मुखालफत में 56। आज़म इसहाक डार चयो तो काबुल में चाय पीण बाद टीटीपी के छड़े वियो बुधायो जेलन मां दहशतगर्दन के कें आजाद कयो। आज मानू आहिन असा सदाई आइन ते अमल कर कयो आहे। जमहूरियत जो दर्स न डिनो वञे दहशतगर्दी के हाणे खत्म न कयो त कॾहिं बि खत्म न थींदी। केपी में इमरजेंसी का बचण लाए आखिरी मिंट ताई कोशिश कई। दहशतगर्दी खिलाफ केपी गड रखण की हर मुमकिन गड हकीकत वजीर मोहसिन नकवी अपोजिशन के गालियन की आछ कंदे चयो आहे त सुहेल आफरीदी कें भी ऑपरेशन में फौज सां गड न हो। चवंदो हो तो फौज सां गड हलण सियासी तौर अफोर्ड नथो करे सघां। गालियन मां भी ही हुआ केपी में गवर्नर आज एमरजेंसी लगाए वफाक के खतरे में विधो वियो आहे। इसाकदार मौलाना फजल रहमान के वडे वजीर की तब्दीली लाए छावील करण सां दहशत नवला मोहसिन नकवी आज़म नज़ीर जो किरदार सारा जगो हो। रुगो जो चयो असेंबली के फैसले तहत हलण की गाल कई हुई। अपोजिशन लीडर महमूद अचकजई चयो तो मोहसिन नकवी से कदें भी पीटीआई वारा भी आचर से लॉन्ग मार्च खत्म करण लाए तैयार थी विया हुआ। सूमर ते सब कुछ बुधाए चुको है। पार्लियामेंट में खिताब कंदे पीपी शरीर रहमान चयो तो गालियन दौरान बैरिस्टर गोहर जो रवैयो मुस्बत हो। अपोजिशन जा घणा मुतालबा भी तस्लीम थी विया हुआ। पाण गालियन का परे थी

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर, अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: brought to you by Super White Rice Collagen Beauty Cream, a project by Aksa Cosmetics Pakistan.
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6.
0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: brought to you by Super White Rice Collagen Beauty Cream, a project by Aksa Cosmetics Pakistan.
0: अब आप सुनेंगे GAFM, आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: brought to you by Super White Oil Free Beauty Cream, मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए. Super White Oil Free Beauty Cream के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में. अब प्रोजेक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान.
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6. सिंध जो आवाज, बदलता रहो.
3: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
4: उसी खिते की बनी है आवाज.
3: GAFM नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज.